FM 102.3.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात के साथ हार्दिक अभिनंदन।

0: ये आकाशवाणी गोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि

0: भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। आइए प्रातःकाल के इस शुभ बेला में नतमस्तक हो जाएं ईश्वर के समक्ष भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना के माध्यम से।

रख लो लाज हे उमा सुत, विनती सुन लीजिए, प्रथम वंदन सेवा सुमिरन, वरदान मंगल दीजिए।

दुनिया के इस जंजाल में कभी अटकने ना देना, सदा साथ रहना प्रभु मेरे, मुझे कभी भटकने ना देना। तुम ही शब्द, तुम ही अर्थ, तुम बिन प्रभु सब कुछ व्यर्थ।

ज्ञान बुद्धि विद्या मिले गणपति के दरबार में, लंबोदर की शरण में जाने से ही हो उद्धार संसार में।

राम कृष्ण दो नाम हैं, मिलकर मधु बरसाते हैं, सबके दीन दयाला हैं, भक्तों के रखवाले हैं।

मिलता है सच्चा सुख केवल तुम्हारी शरण में, है विनती यही हर पल रहे ध्यान तुम्हारे चरण में। आज की अर्चना को सुशोभित करने वाले पुष्प स्वर थे अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, बेला सुलाखे और महेंद्र कपूर के। प्रभु की कृपा से रोशन मेरा हर सवेरा है, आंखों में जो सजे सपने वो तेरी कृपा का बसेरा है। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को देते हैं विराम।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर शोभना राव का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण सुन रहे थे। मुख्य स्वर था शोभना राव का, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 102.3.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी गोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए सुनिए पर्यावरण चेतना से जुड़ा कार्यक्रम आबोहवा। लघु वार्ता का विषय है प्रदूषण के शिकार होते पक्षी। वार्ताकार हैं प्रवीण कुमार।
1: प्रकृति की सबसे खूबसूरत सौगात पर्यावरण का, जिस प्रकार हमने अपनी जरूरतों की खातिर क्रूरता व निर्दयता से दोहन किया है, उससे उत्पन्न हुए और हो रहे खतरों की कतार बहुत लंबी हो गई है। जल, जमीन और वायु जहाँ मिलते हैं वहीं जीवमंडल स्थित होता है और जीवन वहीं पर संभव है। जहाँ पर वायु, जल, भोजन, उपयुक्त तापमान व प्रकाश विद्यमान है, पर्यावरण पर इंसानी क्रूर प्रहार और दोहन की वजह से परिंदों का बसेरा अब छिन गया है। पक्षियों की कई प्रजातियां अब नजर नहीं आती है और पर्यावरण के प्रदूषण से हमने उनके विलुप्त होने की बुनियाद रख दी है। जाहिर सी बात है कि शहरीकरण और कटते हुए जंगल इसके जिम्मेदार कारकों में सबसे अहम है। पक्षी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण को बचाने में

0: पक्षी तीन तरह की भूमिका निभाते हैं। कुछ पक्षी प्रकृति की चीजों का फैलाव करते हैं, जैसे बीजों का फैलाव, इससे पौधों का विस्तार होता है। कुछ पक्षी ऐसे कीटों और पतंगों को खा जाते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ पक्षी प्रदूषण के प्रभाव के अच्छे संकेतक होते हैं। पक्षियों का विलुप्त हो जाना एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसके बहुत गंभीर परिणामों के कारण खाद्य चक्र व इनसे जुड़ी पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगी। वर्तमान समय में प्रकृति के सफाई कर्मचारी यानी कि गिद्ध, जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर सफाई को अंजाम देते हैं, वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। एक नन्ही सी चिड़िया से कौन परिचित नहीं होगा। हमारे घरों में दीवार पर तस्वीर के पीछे यह अपना छोटा सा घोंसला बनाती थी, लेकिन अब तो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण होने से उन्हें अपना घोंसला बनाना कठिन हो गया है। यह चिड़िया बारिश में जमीन पर पड़े हुए पानी में नहाते हुए दिखाई दे जाती थी, पर अब कहाँ वो नजारा देखने को मिलता है। फूलों से रस चूसती हुई मधुमक्खी जो फूलों से मकरंद चूसकर शहद में परिवर्तित करती है, किंतु वर्तमान समय में प्रदूषण व नवीनीकरण के कारण शहद की मधुमक्खियां भी लुप्त होती जा रही है। रंग बिरंगी मनमोहक बागों में फूलों का रस पीती हुई तितलियों का आसियाना भी अब प्रदूषण व औद्योगिकीकरण के कारण नष्ट होता जा रहा है। प्रदूषण के कारण ओजोन मंडल में भी छिद्र हो गए हैं, जिसकी वजह से तीव्र पराबैंगनी किरणें धरती पर प्रवाहित हो रही है। चूंकि मानव को तो इनसे बचने के तरीके ज्ञात है, किंतु पक्षियों को मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। पेड़ पौधों के निरंतर दोहन से उनके अस्थायी घर बर्बाद हो रहे हैं, जिससे उन्हें रहने तक की जगह प्राप्त नहीं हो पा रही है। जल प्रदूषण के कारण पक्षियों का पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है। पक्षी तालाब बावड़ियों के सूख जाने से प्यासे मरने की स्थिति में हैं, या फिर जहरीला व कीटनाशी पानी पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। प्रदूषण के दुष्प्रभाव झेल रहे पक्षियों की हम चाहे तो थोड़ी मदद कर उनकी जान बचा सकते हैं। हम बहुत से ऐसे पक्षी जो कृत्रिम घोंसला नहीं बनाते हैं, उनके लिए हम या तो अपने घर पर या आसपास कुछ घोंसले तैयार कर सकते हैं। कोशिश करें कि स्थानीय पेड़ों की किस्में लगाएं, क्योंकि पक्षी इन्हीं पर अपना घर बनाते हैं और छोटे और घने पेड़ भी एक अच्छा आमंत्रण है। उदाहरणार्थ टर्की देश में घर के बाहर पक्षियों के लिए घर बनाना बहुत शुभ माना जाता है। अतः हमें भी साल के अपने त्योहार की तरह पक्षियों के प्रजनन के अनुकूल मार्च माह में एक रिवाज बना लेना चाहिए, जिससे शायद प्रकृति, जो हमसे धन्यवाद के रूप में कुछ नहीं चाहती, उसे हम कुछ दे पाए। हालांकि यह तो संभव नहीं है कि विलुप्त हो चुकी पक्षियों की प्रजातियां वापस आ सके, लेकिन वैज्ञानिक क्षेत्र में इनकी क्लोनिंग के कार्य पर शोध जारी है, जो एक कठिन कार्य है। तो अगर हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के साथ ही रेस्पेक्ट शब्द को भी प्रकृति के लिए जोड़ दें, तो इससे बेहतर और क्या होगा। ऐसा करके पर्यावरण को खूबसूरत कर पाने की यकीनन यह एक उपयुक्त पहल होगी।
1: प्रदूषण के शिकार होते पक्षी, ये लघु वार्ता अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण चेतना से जुड़े कार्यक्रम आबोहवा में। वार्ताकार थे प्रवीण कुमार, संयोजन था हिमांशु नामा का। समय है कार्यक्रम विवरण का।

लीजिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम आरोग्यवाणी सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वैद्य मृगेंद्र जोशी। प्रातःकालीन सूचनाओं से जुड़ा कार्यक्रम नमस्कार कोटा सुबह 7:00 आप सुनेंगे। महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:30 का। चर्चा होगी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी ढूंढ सकते हैं खुशी के पल। कहानी सुनिएगा पहल, कहानीकार होंगी मीनू परियानी।

जानकारी में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आप जानेंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दोपहर 12 बजे सुनिएगा। फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे शीर्षक गीत सुबह 7:30 पर, सुबह 9:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम युवाणी शाम 5 बजे आप सुनेंगे। आज का संवाद होगा निवेश की आदत युवावस्था से ही और आत्मसम्मान और दंभ में अंतर है विषयों पर। रंग रंगीलो राजस्थान में कोटा के पर्यटन स्थल के बारे में आप जानेंगे। नॉलेज कॉर्नर के विषय होंगे कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की जयंती और वीवी गिरी की पुण्यतिथि विषयों पर। साथ ही होंगी रोजगार सूचनाएं और करंट अफेयर्स। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा 7:00 का। चर्चा होगी मृदा परीक्षण, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय। सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली स्वास्थ्य समस्या और समाधान। जानकारी देंगे डॉक्टर कमल चंद मीणा। लोक संगीत का समय रहेगा 7:30 का। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8 बजे का। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत में आज के कलाकार होंगे हेमंत कुमार। विविध भारती के कार्यक्रम और समाचारों का समय यथावत रहेगा। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर। गया अंधेरा आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ हुआ है आपका नूतन सवेरा। जहां बिखरेंगे अनेक रंग, होगा नित नया विचार, जानकारियां, सूचनाएं और गीत संगीत की बहार। लीजिए सुनिए विविधताओं से भरा आपका मनचाहा कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

सुप्रभात, शुभ प्रभात, मंगल प्रभात, करते हैं आपका अभिवादन। बनेगी नहीं बात यदि नहीं किया आपका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। शशि सोनी की आवाज सुन रहे हैं आज। हमने कर दिया है कार्यक्रम नमस्कार कोटा का आगाज।

और कार्यक्रम की शुरुआत आज के प्रेरक विचार के साथ। हम सभी पढ़ते सुनते आए हैं, एकता में शक्ति होती है। एक अकेला व्यक्ति कहीं भी पीछे हट सकता है। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मगर संगठन में शक्ति होती है। समूह हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आवश्यकता है एक दूसरे पर विश्वास करने की और विश्वास पर खरा उतरने की। रखो परस्पर मेल, मन से छोड़कर अविवेकता।

मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी में एकता। एकता की भावना का अर्थ है आपसी मतभेदों और विविधताओं से ऊपर उठकर एकजुट होना। यह मनुष्यों के बीच सहयोग, विश्वास और हम एक हैं की भावना को दर्शाती है, जो किसी भी समाज, परिवार या राष्ट्र को मजबूत बनाने का मूल आधार है। एकता की भावना व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होने देती और भावनात्मक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। किसी भी कार्य, व्यवसाय या खेल में टीम भावना के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। संकट या आपदा के समय एकजुट होने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद एक साझा राष्ट्रीय पहचान है। अनेकता में एकता, हमारी यही सबसे बड़ी ताकत है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो लोग दुनिया में परस्पर जुड़ाव और एकता में विश्वास रखते हैं, वे जीवन में कहीं अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। एकता में शक्ति है। इसका अर्थ है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वे अधिक मजबूत हो जाते हैं। एकजुट होकर काम करने वाली टीम अधिक जीतती है। जब परिवार एकजुट होते हैं तो समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम ने एकता की शक्ति को सिद्ध किया। एकता से समाज में शांति और सौहार्द बना रहता है। यह राष्ट्र को मजबूती देती है और विकास की गति को तेज करती है। तो परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल, देश के हर स्तर पर एकता की आवश्यकता होती है। एकता का संदेश हमें यही सिखाता है कि मिलकर रहने और आपसी सहयोग से हर बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह न केवल समाज में शांति और सुरक्षा की भावना पैदा करती है, बल्कि राष्ट्र और समुदाय की उन्नति की सबसे मजबूत नींव भी है। तो मिलजुल कर रहें, एकता के साथ रहें।

काल्पनिक और जादुई दुनिया के बजाय जब हम आने वाली पीढ़ियों को असल जिंदगी में बहादुरी, त्याग और साहस की मिसाल कायम करने वाली वीरांगनाओं की गाथाएं सुनाते हैं तो उनके भीतर नेतृत्व और स्वाभिमान के मजबूत संस्कार पैदा होते हैं। यदि हमें हमारे बच्चों को मजबूत बनाना है, सही मार्गदर्शन देना है, सही राह दिखाना है तो उन्हें कहानी वीरांगनाओं की सुनाओ, परियों की नहीं। भारतीय इतिहास में ऐसी कई वीरांगनाएं रही हैं जिनका शौर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ और उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई, रणभूमि में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा सन 1824 में ही अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का बिगुल बजा दिया था। रानी दुर्गावती मुगल आक्रमणकारियों के सामने कभी घुटने न टेकने वाली और अदम्य साहस के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद होने वाली वीरांगना थी। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर, ऐसे अनगिनत नाम भारतीय वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वीरांगनाओं की शौर्य गाथाएं बच्चों में साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संस्कार जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके त्याग की कहानियां बच्चों को सिखाती हैं कि देश हित सबसे ऊपर होता है। रानी लक्ष्मीबाई साहस का प्रतीक मानी जाती हैं। बच्चों को इनसे अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ना और कभी हार न मानना सीखने को मिलता है। वीरांगना झलकारी बाई एक साधारण परिवार से होने के बावजूद इन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई। बच्चों को यह सीख मिलती है कि राष्ट्रभक्ति के लिए पद या वर्ग मायने नहीं रखता, सिर्फ सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, भारत की आजादी के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाली इस रानी से बच्चे मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम सीख सकते हैं। उदा देवी पासी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभालने वाली इस वीरांगना से बच्चों में निडरता और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का हौसला मिलता है। शौर्य गीत, शौर्य कविताएं और ऐसी पुस्तकें बच्चों को सुनाना और पढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें सही दिशा मिले, राष्ट्र के प्रति उनके मन में प्रेम जगे। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में वीरांगनाओं का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक रहा है। इन साहसी महिलाओं ने न केवल युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया बल्कि गुप्त रूप से आंदोलन चलाने, रैलियों का नेतृत्व करने और जेल जाने जैसे जोखिम भी उठाए। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया था और वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी अवंतीबाई लोधी, रामगढ़ की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों को राज्य न सौंपने की कसम खाई और खुद अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। झांसी झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल, जिन्होंने रानी की जान बचाने के लिए खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और अंग्रेजों को भारी चकमा दिया।

सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध। इन्होंने देश विदेश में भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार किया और सत्याग्रह आंदोलनों में लाठियां खाई। ऐसे अनगिनत नाम हैं। उमा देवी पासी एक साधारण परिवार से थीं जिन्होंने सिकंदर में पेड़ पर चढ़कर कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। मातंगिनी हाजरा 61 वर्ष की उम्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और गोलियों से छलनी होने के बाद भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। तो ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनकी गाथाएं हम हमारे बच्चों को सुना सकते हैं और बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में वीरांगनाओं का योगदान अतुलनीय और ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि अहिंसक आंदोलनों और सामाजिक उत्थान में भी पुरुषों से कंधा मिलाकर नेतृत्व किया। उनके अदम्य साहस और त्याग और राष्ट्रभक्ति को हम शत शत नमन करते हैं। इन वीरांगनाओं को न केवल देश को स्वतंत्र कराने में अपनी जान की बाजी लगाई बल्कि महिलाओं की पारंपरिक छवि को तोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक कूटनीति, शांति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करना और राजनयिक नेतृत्व में उनकी समान भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और महासभा ने 20 जून 2022 को अपने प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 24 जून को इस विशेष दिवस के रूप में इसे घोषित किया। ऐतिहासिक रूप से कूटनीति के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहा है। यह दिवस अनेक लक्ष्यों को लेकर काम करता है। निर्णय लेने और कूटनीतिक पदों के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। शांति प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है। वैश्विक शांति और सतत विकास में महिला राजनयिक शांति दूतों और मध्यस्थों द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचानना है। विश्व स्तर पर राजनयिक मिशनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महिलाओं के नेतृत्व को मान्यता देने और शांति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा होती है। इस दिवस के उपलक्ष्य में दुनिया भर में राजनयिक और दूतावास विशेष सम्मेलनों, पैनल चर्चाओं और नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दिन कूटनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, रुकावटों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है और समावेशी नेतृत्व की आवश्यकता को उजागर करता है।

वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। उन्होंने 1564 में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सम्मान और राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय आखिरी दम तक मुगल सेनापति आफस खान की विशाल सेना का डटकर सामना किया। 24 जून 1564 को नरई नाला के पास हुए भयंकर युद्ध में दुश्मनों के तीरों से गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए अपनी कटार खुद अपने सीने में घोप कर शहादत प्राप्त की। उनके पति राजा दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बिठाकर करीब 16 वर्षों तक गोंडवाना की बागडोर अत्यंत कुशलता से संभाली। विशेष रूप से मध्य प्रदेश और अन्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उनके बलिदान

सी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। पंडित ओकारनाथ ठाकुर, जिनका जन्म 24 जून 1897 को गुजरात के बड़ौदा रियासत के जहाज नामक गांव में एक सामान्य सैन्य परिवार में हुआ था। एक पारसी परोपकारी व्यक्ति की सहायता से उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के संगीत विद्यालय गंधर्व महाविद्यालय मुंबई से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के प्रथम सूर्योदय के समय आकाशवाणी से पंडित जी के स्वरों में निबद्ध राष्ट्रगीत वंदे मातरम प्रसारित किया गया था। महात्मा गांधी उनका संगीत सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने कहा था, पंडित ओकारनाथ जी अपने एक गीत के माध्यम से वह हासिल कर सकते हैं जो मैं कई भाषणों के माध्यम से भी हासिल नहीं कर सकता। पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के पहले संकाय अध्यक्ष बने थे। उन्होंने भारतीय संगीत शास्त्र पर आधारित संगीतांजलि और प्राण भारती जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

0: बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: लीजिए कुछ स्थायी सूचनाएं, स्थानीय सूचनाएं आपको दे देते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की तर्ज पर स्नातक स्तर पर बीए की 10 विषयों में पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। 80 सीटों के लिए कोटा विश्वविद्यालय ने प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है। प्रवेश मेरिट के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय के लिए स्टूडेंट्स की मांग और एनईपी 2000 के तहत बीए में कुल 10 विषयों को शामिल किया गया है। इनमें योगा और फिजिकल एजुकेशन को पहली बार जोड़ा गया है। इसमें निर्धारित संख्या में स्टूडेंट्स आने पर कोर्स शुरू हो सकेंगे। आवेदन अधिक आए तो सीटें बढ़ सकती हैं।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने जोधपुर और चेन्नई के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष रेल सेवा पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के सवाईमाधोपुर, सोगरिया, बारां और छबड़ा गोगो स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी। गाड़ी संख्या 04815 जोधपुर चेन्नई बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 27 जून से 25 जुलाई 2026 तक प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी। यह ट्रेन जोधपुर से रात 9:20 पर रवाना होकर सोमवार को शाम 8 बजे चेन्नई पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04816 MGR चेन्नई सेंट्रल जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 जून से 28 जुलाई 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। जिले के ऐसे दिव्यांगजन जिनके परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं और जिनके पास पूर्व में स्कूटी के लिए आवेदन किया गया था परंतु उन्हें किसी कारणवश स्कूटी नहीं मिल सकी, वे दिव्यांग स्कूटी के लिए SSO ID पर जाकर SJMS DSP पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक कर सकेंगे। आवेदनों की अपेक्ष पूर्ति 15 जुलाई तक की जा सकेगी। और विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

और हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, तो चलते चलते यही कहेंगे, रामायण एक श्रेष्ठ कथा है जो एक अमूल्य सीख देती है। दशानन जब धराशायी हुए, मृत्यु की शैया पर लेटे थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उनसे ज्ञान अर्जित करो, वो महाज्ञानी है, उनसे ज्ञान अर्जित करने का श्रेष्ठ अवसर है। लक्ष्मण ने ना की, किंतु श्री राम के समझाने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। उन्होंने रावण से कहा कि भ्राता राम ने आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा है। रावण चुप रहे। लक्ष्मण बोले, आप तो बड़े अहंकारी हैं, मृत्यु की शैया पर लेटे हो, अंतिम श्वास गिन रहे हो, तब भी इनका इतना अहंकार। रावण ने कहा, अपने भ्राता को बुलाओ। श्री राम आ गए, रावण के चरणों के पास खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और बोले, हे महापंडित रावण, आप महाज्ञानी हैं, कृपा करके कुछ ज्ञान हमें दीजिए। रावण ने बड़ी विनम्रता से उनकी बात मान ली, बड़ी विनम्रता से क्षमा याचना भी की और संसार को तब अत्यंत श्रेष्ठ उपदेश दिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों में ही तेज था, दोनों ही अत्यंत श्रेष्ठ थे, वीर थे, बलवान थे, किंतु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उनमें वीरता है, साहस है और साथ में उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है और वो गुण है विनम्रता का। यह अत्यंत श्रेष्ठ गुण है। यदि कोई आपको कटु वचन कहे तो आप उसे विनम्रता से उत्तर दे सकते हैं। यह विनम्रता एक ऐसा भाव है जो कोमल लगता है परंतु उतना ही प्रबल शस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र जो सभी को निरस्त्र कर सकता है। यदि आप साहसी हैं और विनम्र हैं तो आप विजेता बनेंगे, यदि आप ज्ञानी हैं और विद्वान हैं तो आप अवश्य महाज्ञानी बनेंगे, किंतु यदि आप विनम्रता से अपने मन में विनम्रता को स्थान देते हैं तो आप हमेशा जीवन में ज्ञानी रहेंगे। तो अपने जीवन में विनम्रता को स्थान दीजिए। और अब कार्यक्रम समाप्त हो गया। हम आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन था तेज राम मीणा का, प्रस्तुति राजेश महावर की। अनुमति दीजिए शशि सोनी को। नमस्कार कोटा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा, FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर। हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। आज आप सुनेंगे शीर्षक गीत और आज का हमारा शीर्षक है पागल। पागल का सामान्य अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो अपने मानसिक संतुलन, होश या विवेक को खो बैठा हो। बोलचाल में इसे विक्षिप्त, सनकी या बावला भी कहा जाता है। किंतु प्यार में पागल का अर्थ किसी के प्रति अत्यधिक लगाव, दीवानगी और समर्पण की भावना है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका के विचारों में इतना खो जाता है कि दुनियादारी से बेखबर हो जाता है। इस भावुक स्थिति को अक्सर हिंदी सिनेमा और साहित्य में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है।

जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर के स्वर में सुन रहे थे। गीत रचना थी शैलेंद्र की और संगीत था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आरोग्यवाणी कार्यक्रम में आज प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मृगेंद्र जोशी से बात कर सकते हैं। समय याद रखिएगा, आज प्रातः 8:15 से 9 तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2941 एसटीडी कोड 0744 2941420744। शीर्षक गीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम बंधन का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए सुनिए फिल्म साजन का ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हम आपको बता दें, आरोग्यवाणी कार्यक्रम में आज प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मृगेंद्र जोशी से बात कर सकते हैं। समय याद रखिएगा, आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2941 142, एसटीडी कोड 0744, 2941142 0744। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शीर्षक गीत, और आज का शीर्षक है पागल। और लीजिए अब ये गीत सुनिए, कुमार सानू की आवाज, फिल्म का नाम अंदाज। शब्दों से गढ़ा समीर ने और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: शीर्षक गीत में अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वर। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन उत्तम सिंह की।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: प्रातः 8:15 पर आरोग्य कार्यक्रम आप सुनेंगे, आरोग्य वाणी कार्यक्रम। विषय होगा बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मृगेंद्र जोशी से बात कर सकते हैं। समय याद रखिएगा, प्रातः 8:15 से 9 बजे तक हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2941, एसटीडी कोड 0744, 2941142, 0744। और लीजिए शीर्षक गीत की अंतिम प्रस्तुति हम आप तक पहुंचा देते हैं। फिल्म का नाम है फूल और कांटे। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने, लिखा है समीर ने और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीत। आज का शीर्षक था पागल। एफएम 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगू के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे

0: राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है।

0: 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100 परसेंटाइल वाले 20

0: प्रतिशत बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में सीयूईटी के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली एनसीआर में अभी हफ्ते और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वही राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपर फूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 व 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा, किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाए अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।
2: आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी। तेज गर्मी चिलचिलाती धूप से राहत लाता है मानसून, जिससे सब कुछ हरा भरा और जीवंत हो जाता है। बरसात के साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी आती हैं, जैसे संक्रमण, मच्छर जनित बीमारियां, भोजन और पानी का दूषित होना, त्वचा संबंधित समस्याएं। मानसून के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारा आज का विषय है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मृगेंद्र जोशी, सेवानिवृत्त दाऊदयाल जोशी आयुर्वेद चिकित्सालय से। नमस्कार डॉक्टर साहब।
4: नमस्ते जी।
2: कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
2: और जैसा कि हमारा आज का विषय है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा
4: जी,
2: और अभी ऋतु संधि काल चल रहा है, तो इस समय क्या ध्यान रखा जाए
4: जी
2: बातों का?
4: अभी ग्रीष्म ऋतु खत्म होने को है
2: जी।
4: ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में रहती है और जून जुलाई में सूरज की तेज रोशनी, गर्म किरणें सारी पृथ्वी पर आती है और वो अपने शरीर का जो चिकनाई भाग है उसका शोषण कर लेती है, जिसकी वजह से मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, तालाब, कुएं, ये सब सूख जाते हैं
2: जी।
4: और इसके तुरंत बाद बरसात का मौसम चालू होता है, तो जैसा कि आपने बताया कि हरा भरा मौसम, जो पेड़ पत्ते सूख जाते हैं वो पत्ते नए आ जाते हैं, हरियाली चारों तरफ छा

आने लग जाती है और मनुष्य का जीवन भी तरावट युक्त बरसात के मौसम में हो जाता है। लेकिन अभी जो ऋतु संधि काल चल रहा है इसमें दिन में तो धूप निकल रही है और धूप निकलते निकलते ही बारिश चालू हो गई अचानक से। पसीने में आदमी चल रहा है और पसीने के साथ साथ फिर कपड़े गीले हो गए और गीले कपड़ों में ही अपना काम कर रहा है। थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं लेकिन शरीर में जो

0: साथ फिर कपड़े गीले हो गए और गीले कपड़ों में ही अपना काम कर रहा है, थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं लेकिन शरीर में जो चिपचिपाहट अंदर के अंदर रुकी है
1: जी।
0: वो फंगल इन्फेक्शन, खुजली की समस्या, दाफड़, गमोरियां, खुजली, जो संधि स्थान है हमारे, कूल्हे के जोड़ है, कंधे के जोड़ है, इनमें पसीने का अंदर के अंदर जो शोषण होता है वो, और कपड़ों की रगड़ लग के त्वचा के विकार हो जाते हैं। तो इस मौसम में हमको त्वचा के विकारों से बचना चाहिए
1: जी।
0: परंतु आयुर्वेद में इस ऋतु संधि काल में वायु का प्रकोप भी बहुत होता है
1: जी,
0: क्योंकि जो पिछला मौसम गया है उसके बाद अभी पित्त का संचय होता है, प्रकोप नहीं होता है
1: जी,
0: और इस मौसम में उसकी वजह से अग्नि मंद हो जाती है, भूख लगने की प्रक्रिया इस मौसम में स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है
1: जी।
0: तो भूख के अनुसार व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं लेना चाहिए जो देर से पचती हो, भूखा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बरसात के टाइम में शरीर का बल भी कम होने लगता है क्योंकि पाचक अग्नि मंद होने से जो हम खाना खा रहे हैं वो पच नहीं पाता है
1: जी,
0: क्योंकि पित्त का संचय होता है, पित्त प्रकोप नहीं होता है। और बढ़ी हुई नमी जो इस मौसम में उमस और सीलन होती है, और अगर खाने पीने में आपने ध्यान नहीं रखा है
1: जी,
0: साथ में बरसात का दूषित जल पिया है, तो कई सारी रोग इस समस्या का समाधान समस्या से पीड़ित हो सकता है
1: जी।
0: जैसे आंतों में संक्रमण हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, पीलिया होने की संभावना रहती है, सर एकदम से गीले हो गए, पसीने में काम कर रहे हैं तो जुकाम की एलर्जी हो सकती है, खांसी की एलर्जी हो सकती है। जो उमस और सीलन वाला मौसम होता है उस मौसम में छोटे बच्चों में नमूनिया, बड़े लोगों में सांस की दिक्कत होती है, तो उमस और सीलन की वजह से, सफोगेशन एंड पोल्यूशन की वजह से उन लोगों में ये समस्या बरसात के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलती है।
1: हेलो
0: जी,
1: हमारे साथ एक कॉलर है,
0: इन्हें
1: हेलो।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते,
1: कौन बोल रहे हैं? संपर्क टूट गया जी।
0: ओ, जो दूषित पानी है, बरसात का पानी नदियों में आता है
1: जी,
0: और वो नदियों का पानी हमारे घरों में सप्लाई होता है, और उसमें नीचे कई तरह की गाद जमी हुई होती है, गंदगी युक्त पानी होता है, और उस पानी को हम घर में रोज काम में लेते हैं
1: जी,
0: पीने के लिए। तो मेरी सलाह रहेगी कि हम 4 लीटर पानी 5 लीटर पानी रोज रात को बॉयल करें, रात भर में उसको ठंडा होने दें, ताकि जितना संक्रमण बरसात के पानी सारी जगह से कचरा इकट्ठा होता हुआ वो नदियों में जाके गिरता है, तो नदियों का पानी, तालाब का पानी दूषित हो जाता है। तो दूषित पानी पीने से उल्टी, दस्त की समस्या, पेट में मरोड़ी की समस्या, ये बरसात के सीजन में सामान्यता देखी जाती है। तो ऐसे लोगों को पानी को उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए। साथ में चर्म रोग नहीं हो, उमस और सीलन हो रही है और अचानक बारिश में आप गीले हो गए, तो वैसलीन या नारियल का तेल
1: जी
0: अपन को सारे शरीर में अच्छी तरह से रमाना चाहिए, और जो गीले कपड़े हैं उन गीलो कपड़ों को तुरंत बदलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि गीले की वजह से शरीर में पसीने की एलर्जी और गीले कपड़ों की एलर्जी शरीर में दाफड़ पैदा नहीं करे, खुजली पैदा नहीं करे, फुंसियां नहीं हो, चर्म रोग के मुहासे नहीं निकले, उमस और सीलन में पसीना आ रहा है और आप अपना खान पान गर्मी के हिसाब से रख रहे हो तो वो भी नुकसान करेगा। तो इस मौसम

0: में अधिकतर जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें शहद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए
1: जी।
0: जैसे आप दूध पीते हैं, गर्म दूध में नहीं, ठंडे दूध में शक्कर की जगह आप शहद मिलाएं 4-6 बूंद
1: जी।
0: या छोटे बच्चों को नाश्ता देते हैं तो नाश्ते में आजकल केमिकल के बने हुए कई सारे आइटम लगाते हैं, जैम जेली, उसकी जगह हमको प्योर शहद बच्चों को देना चाहिए। तो शहद से इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी मजबूत होता है
1: जी।
0: और यूं बच्चे शहद चाटेंगे नहीं, आप उसको जो भी आप नाश्ता देते हैं उस नाश्ते में शहद लगा के दें
1: जी।
0: दिन में 1-2 बार नींबू पानी पिलावें ताकि मूत्र की मात्रा बढ़े, विटामिन सी जावे ताकि शरीर में मूत्र के जरिए हम नींबू पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से उससे आवश्यकता से अधिक पेशाब आएगा
1: जी।
0: तो पेशाब के जरिए बहुत सारे शरीर के जो विषाणु हैं जो संक्रमण पैदा करने वाले होते हैं मल और मूत्र के द्वारा निकलते हैं, तो नींबू इस टाइम में पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध होता है। तो बरसात के ऋतु में नींबू का और शहद का थोड़ा सा प्रयोग घर में बढ़ावें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और ऐसा भोजन करें जो अग्नि को मंद नहीं करे, भूख को बढ़ावे। तो भूख बढ़ाने के लिए आप घरेलू उपाय बहुत सारे होते हैं
1: जी। पहले हम ये कॉलर को
0: जी जी
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी
2: कौन फोन कर गया था उससे
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार, मैं महेश बोल रहा हूँ कोटा से
1: जी। पूछिए
2: डॉक्टर साहब, मेरी एज 67 है
0: जी।
2: और थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके है लेकिन मैं आपके, क्योंकि आप एक बहुत ही अनुभवी वैद्य हैं तो मैं आपकी सलाह लेना चाह रहा था साहब। मेरे पेट में ना आफरा टाइप बना रहता है और जलन नहीं रहती ऊपर सीने में, लेकिन बार बार IBS सिस्टम जैसा इस टाइप बना रहता है इन
0: जी जी
2: तो
0: जी जी।
2: और गैस पेट में बनती है मतलब
0: जी जी जी।
2: तो इसके लिए सर कुछ बताएं।
0: तो अभी इसी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। IBS का बहुत बड़ा कारण और पेट में फुलाव का कारण मल आंतों में सड़ता है। मल एक बार में पूरी तरह से निष्कासित नहीं होता है
2: जी।
0: तो अभी जो सीजन 15-20 दिन अभी बरसात के बाकी है, इस सीजन में बीला बाजार में मिलता है, बिल पत्र जिसमें आते हैं उसका फल आता है, तो बिल का जूस, बीले का जूस आप अभी बरसात से पहले पहले 15-20 दिन तक लें तो आपको जो मल इकट्ठा हो रहा है और थोड़ा थोड़ा करके IBS के रूप में थोड़ा थोड़ा इरिटेट करके निकलता है, वो मल आपका बंद के एक ही बार में निकलने लग जाएगा
2: जी।
0: तो दिन के टाइम में आप ये लेवे बीले का जूस साथ में। अभी बरसात का सीजन चालू नहीं हुआ है, अभी तेज गर्मी थोड़ी सी पड़ रही है, संधि काल है, तो आप छाछ ले सकते हैं
2: जी।
0: दिन में 10-5 के बीच में, पर छाछ अकेली ना ले।
2: अच्छा,
0: अकेली छाछ का कोई फायदा नहीं है। पेट डिस्टर्ब हो रहा है तो पेट को सेट करने के लिए आप उसमें फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स करें। जैसे 7 दिन के आप 7 रायते बनाएं, 7 रायते, एक दिन लौकी का रायता, एक दिन कद्दू का रायता, एक दिन खीरे का रायता, एक दिन अनार का रायता, एक दिन पाइनएप्पल का रायता, एक दिन पपीते का रायता, इस सीजन में बाथली आती है तो बाथली का रायता, और उसमें लाल मिर्ची हरी मिर्ची नहीं डाले, उसमें सेंधा नमक काली मिर्ची जीरा हींग पुदीने के पत्ते डाल के अपने भोजन को, भोजन के साथ फाइबर विटामिन मिनरल कैल्शियम आयरन जो मैंने सब्जियां और फल बताए उनमें ऐसे पोषक तत्व जाएंगे जो आने वाले सीजन में अगर अग्नि मंद भी होगी तो भी ये डाइजेस्टिव और लेग्जेटिव परगेटिव सब काम करेंगे, मल का विसर्जन ठीक करेंगे और इजीली पच जाएगा, आंतों पे लोड नहीं पड़ेगा। अपन को प्रयास ये करना है कि आने वाले सीजन में गरिष्ठ भोजन, क्योंकि अग्नि मंद है और आप गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ भोजन में हलवा।

0: पुड़ी का नाश्ता कर रहे हैं तो उसको बंद करें और उसकी जगह जो मैंने बताया है
1: जी,
0: रायता, नींबू पानी, शहद का प्रयोग और बेल का जूस अभी अगले 15 दिन तक आप काम में ले सकते हैं, तो पेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा। IBS नाम की चीज आप भूल जाएंगे। साथ में जो पानी पीते हैं, बहुत बड़ा IBS का कारण दूषित पानी है, तो दूषित पानी को ठीक करने के लिए, और IBS है आपको, तो आप 4 लीटर पानी रात को गर्म करें, उसमें 5 ग्राम सौंफ डाल लें और सौंफ को अच्छा खासा उबाल लें पानी में, और रात भर ठंडा होने दें, सवेरे वो पानी काम में ले लें। चाहे तो रात को आप 5 ग्राम इसबगोल सौंफ के पानी से लें, तो आपका टोटल मल का निष्कासन जब तक नहीं होगा, आंतों में सड़ेगा तो आंतों में तनाव रहेगा और गैस बनेगी, तो इसीलिए आप ये घरेलू उपाय करके देखें, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा।
1: जी बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया जी। तो अभी जल जनित रोग और वायु जनित रोग
0: जी,
1: दोनों तरह के रोग देखने को मिलेंगे बारिश के मौसम में, तो ये कौन कौन से रोग हैं?
0: अभी जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा तो अपच हो जाता है
1: जी,
0: हम खान पान में ध्यान नहीं रखते, पिछले ऋतु के हिसाब से खान पान रखते हैं, बरसात में कई सारे फल ऐसे होते हैं जिनको नहीं खाने का होता है, लेकिन गर्मी में हम खा रहे हैं, और बरसात के पानी लगा हुआ फ्रूट या सड़े हुए फल या बाजार के जूस, गन्ने का जूस गर्मी में हमने खूब पिया है, लेकिन बरसात में वो नुकसान करता है। और संक्रमित आंतों में जाके संक्रमण पैदा करता है, हम तो पोषण के लिए पी रहे हैं लेकिन वो पोषण नहीं करके अपच पैदा करेंगे, और आपको पेट में गैस बनेगी या लूज मोशन हो जाएंगे या उल्टी हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे पाच का अग्नि मंद होती है, तो मंद पाच का अग्नि है और आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। जोड़ों के दर्द वाले हैं इस मौसम में, क्योंकि बद्दल होते हैं और बद्दलों में वायु का प्रकोप होता है
1: जी।
0: और हमारे यहाँ जोड़ों के दर्द बहुत सारे उसके भेद हैं, उन भेदों में जैसे गठिया के जो मरीज होते हैं वो बद्दलों के मौसम में बहुत परेशान रहते हैं, इस टाइम पे मच्छर मक्खी कीचड़ की वजह से या पोखरों में गड्ढों में पानी बढ़ने की वजह से, गमलों में पानी रुकने की वजह से, बारिश के पानी की वजह से मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, तो मलेरिया इस मौसम में बहुत मिलता है। उमस और सीलन की वजह से, गीले कपड़े रहने की वजह से खाज खुजली हो जाती है
1: जी।
0: और खाज खुजली के संक्रमण इस मौसम में बहुत सारे लोगों को देखने के मिलते हैं
1: जी। और तो, अब कार्यक्रम में एक अंतराल का समय है
0: जी,
1: हम बातचीत को जारी रखेंगे।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा, किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाए अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध, आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल, कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।
1: आप सुन रहे हैं आरोग्य वाणी कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वैद्य मृगेंद्र जोशी, और इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941 142, एसटीडी कोड 0744-2941142-0744। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे मच्छरों से कैसे बचाव
0: जी,
1: करें।
0: जी, वर्षा काल के अंत में मच्छरों का प्रकोप विशेष रूप से बढ़ जाता है
1: जी,
0: अतः हम जब सोने जाते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, शरीर में सरसों का तेल या मच्छर काटे नहीं उसका ध्यान अपने को रखना है
1: जी। पहले हमारे कॉलर को लेंगे हम
0: जी।
1: हेलो,
3: नमस्कार।
0: नमस्ते,
3: नमस्कार।

0: सर बोल रहा हूँ सर मोहम्मद।
1: हाँ जी पूछिए अपना प्रश्न।
0: हाँ साहब मेरे भी पेट में परेशानी बहुत दिनों के भी जांच होते कराई थी, सोचे नौ दिन बताया लियो पेट मेरे सही नहीं आती है, चल रहा है कैसे चल रहा है इलाज।
2: तो इस विषय पे अभी आपसे पहले वाले कॉलर को मैंने पेट से संबंधित बहुत सारी चीजें बताई है, जी
1: हाँ, तो आपने सुना ही होगा वही सारी चीजें आपको भी करनी
2: वो सब चीजें आप प्रयोग में लें और हल्का भोजन लें, पच जावे पेट में जाके सड़े नहीं ऐसा भोजन लेना चाहिए।
0: रोटी खाने के बाद फिर पकना पड़ता है सर।
2: हाँ हाँ, तो अभी मैंने आपको पहले वाले कॉलर को बताया था कि रात को 4 लीटर पानी गरम करें, उसमें सौंफ डाल लें और सौंफ को उबाल के रात भर ठंडा होने दें, सवेरे उस पानी को छान लें और रात को सोते वक्त 5 ग्राम इसबगोल उस सौंफ के पानी से लेवे, बीले का जूस पिए, छाछ का प्रयोग करें। 15 दिन अभी बाकी है बरसात के, इस मौसम में ले सकते हैं।
0: छाछ कट्टी तो नहीं होती ना सब, कट्टी चीजें बन रही है ना।
2: हाँ हमने आपको बताया अकेला छाछ नहीं पीना है, मैंने पहले वाले कॉलर को बताया था।
0: हाँ बताया सर।
2: वो फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स करिए और उसमें लाल मिर्ची हरी मिर्ची न डालिए, उसमें सेंधा नमक काली मिर्ची डालिए, तो आपको पेट में फायदा करेगा। और खाने में बिल्कुल लाइट भोजन रखिए, पेट में तनाव पेट में दर्द रहता है तो गरिष्ठ भोजन गुड़ के बने हुए, संक्रमित भोजन संक्रमित पानी का विशेष ध्यान रखना है।
1: जी जी बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
2: जी
1: जी डॉक्टर साहब, तो आप बता रहे थे सरसों का तेल लगाना
2: जी
1: चाहिए।
2: तो इस मौसम में चाहे जब बारिश चालू हो जाती है, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, शरीर गीला हो गया, बाल गीले हो गए, संधि स्थान गीले हो गए, उम्र से सीलन हो गई, तो दांत खुजली हो जाती है। वो दांत खुजली को बचाना है तो हमको घर में या तो बोरिक पाउडर है, टेलकम पाउडर है, नारियल का तेल है, वेसलीन है, उसका प्रयोग में लेना है। मुल्तानी मिट्टी से आप ना सकते हैं तो छोटी मोटी जो घमोरियां हैं वो आपकी घमोरियां साफ हो जाएगी। पानी को बॉईल कर लें, उसमें नीम के पत्ते डाल लें, नीम के पत्ते उबाल के ठंडा कर लें, उस पानी से स्नान करें तो खाज खुजली की समस्या नीम के पत्तों से भी ठीक हो जाती है। और
1: जी
2: अधिक खाना, अधिक परिश्रम करना, संक्रमित पानी में स्नान करना, जैसे बरसात के मौसम में नदी नालों में बरसात का पानी आता है तो वो गंदा पानी होता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और बरसात में भीगना और भीगने के बाद केयर नहीं करना रोगों को आमंत्रण देता है, तो रोग होवे ही नहीं, उससे बचने के लिए आपको या तो भीगे नहीं और भीग जाए तो तुरंत अपने कपड़े चेंज करें, सुखा के रखें।
1: जी एक कॉलर है हमारे साथ।
2: जी
1: हेलो।
3: हेलो नमस्कार सर।
1: हाँ जी नमस्कार
3: डॉक्टर साहब को भी राम राम।
2: जय श्री राम राम राम
1: जी पूछिए।
2: जी
1: हाँ जी,
2: तो इस मौसम में पानी जनित संक्रमण बहुत ज्यादा होता है और पानी अगर दूषित है तो पीलिया होने के बहुत चांसेस रहते हैं, अंत्र शोथ हो जाता है। बरसात के ऋतु में गैस बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो गैस अगर परेशान कर रही है तो आपको अजवाइन लेना चाहिए, अदरक के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लें और अदरक के टुकड़ों को देसी घी में भून लें, उसमें सेंधा नमक काली मिर्ची जीरा हींग डाल लें, 4-5 टुकड़े जेब में रखें दिन भर के, और जब आपको लगे कि गैस बन रही है तो वो अदरक को आप दबा के रखिए, चबाइए नहीं है, चूसिए नहीं है, उसको एक कोने में उसका रस जाने देना है, तो जो पाच का अग्नि मंद है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में पेट में तनाव पेट में गैस भारीपन गैस नहीं निकल रही है, वो सब अदरक के टुकड़े से आपको आराम मिलेगा। इसलिए चाहे तो उसमें आप अदरक के नींबू भी लगा मिला सकते हैं और नींबू

0: डाल के उसको छोटे छोटे टुकड़े करके चूस सकते हैं। अगर पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता तो आप मुनक्के दाख, बड़े दाख, 5-7 मुनक्के दाख लें, उसको भी आप सेंधा नमक काली मिर्च डाल के हल्का सा भुना हुआ रख लें जेब में, तो निश्चित रूप से आपका मल का विसर्जन पर्याप्त होगा, तो गैस बनेगी नहीं। गैस जब भी बनेगी जब आपका मल का विसर्जन पूरा नहीं होगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ। जी। हेलो। हाँ जी
0: नमस्ते।
2: मैं कोटा से बोल रहा था।
0: हाँ जी,
2: दरअसल मेरा प्रश्न ये था, कई बार मेरे मल पतला आता है
0: जी,
2: को सही करने के लिए क्या घरेलू उपाय?
0: ये सब चीजें अभी मैं बता चुका हूँ। अपना सबसे जरूरी तो आप टाइम से भोजन करिए और टाइम से संतुलित भोजन करिए। मल कभी पतला हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी मरोड़ चल रही है, कभी लूज मोशन हो रहा है, ये निश्चित रूप से संक्रमित भोजन या संक्रमित पानी की या अनियमित लाइफ स्टाइल का नतीजा है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखे, टाइम से उठे, टाइम से खावे, टाइम से सोवे, टाइम से मल विसर्जन करने जावे, ऐसा भोजन ले जो पेट में जाके गरिष्ठ ना हो, इजीली डाइजेस्ट हो जावे। अभी पिछले कॉलर को मैंने पेट में मरोड़ नहीं लगे, दस्त ठीक आवे, उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिसमें बीला बताया था, इसबगोल बताया था और अदरक के टुकड़े बताए थे, छाछ बताई थी, आप ये सब चीजें काम में लें। इसबगोल सबसे सुरक्षित उपाय है, आप इसको 12 महीने काम में ले सकते हैं। रोज रात को 5 ग्राम इसबगोल सौंप के पानी से आप लें तो आपको सवेरे एक ही बार में शौच खुलासा होगा, बार बार पेट में ऐठा नहीं लगेगा। बेल
2: शौच खुले की नहीं, मैं कह रहा हूँ कई बार पतला आते हैं ना तो उसको इकट्ठा मतलब ठीक करने के लिए वो क्या और क्या लेना चाहिए?
0: इसबगोल बताया ना आपको, पतला लेटना आती तो मल को बांधने के लिए आप इसबगोल ले सकते हैं। रात को लें तो सौंफ के पानी से लें और दिन में लें तो दही में मिक्स करके लें।
2: जी सर।
0: तो आपको मल बंध के आने लग जाएगा, इसबगोल मल को बांधता है
1: जी। डॉक्टर साहब, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करें?
0: जी,
1: क्योंकि बरसात के मौसम में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती
0: है। जी जी जी, बरसात में अपने को मैंने बताया कि रोग हो भी नहीं, इसलिए सबसे पहला तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यही है कि आप उन सब चीजों से बचें जो इस मौसम में होता है
1: जी।
0: दूषित पानी, गीले कपड़े, पसीने की एलर्जी, तो आपको इनसे बचना है। तो अभी इस मौसम में आप गुलाब का शरबत काम में ले सकते हैं
1: जी।
0: अभी इस मौसम में आप आंवले का मुरब्बा, उसको धो लें, अच्छी क्वालिटी का आंवला लेके उसको धो लें और धोने के बाद उसमें एक चांदी का वर्क लपेटे। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आंवले से बेहतर इस मौसम में कोई दवा नहीं है
1: जी।
0: अकेला आंवला आप खा नहीं पाएंगे तो आंवले का मुरब्बा लाएं, उसकी चाशनी हटाएं, उसमें एक चांदी का वर्क लपेटे ताकि वो कूलिंग का काम करे, ठंडक दे शरीर में, चांदी ठंडक देती है। तो वो आप चांदी का वर्क लपेट के रखें और उसको एक मुरब्बा रोज आंवले का आप सेवन करें पूरा बरसात के टाइम में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता केवल आंवले से ही बढ़ जाएगी
1: जी।
0: जी
1: हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी बोलिए।
4: नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
4: जितेंद्र बात कर रहा था।
0: हाँ बोले
4: सर, मेरे को पूछना था आपसे
0: जी।
4: सर मैं सुबह भी दो बार शौच करने जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ सर
0: जी।
4: पर सुबह को मेरे को सुबह दो बार नहीं जाता हूँ ना, जब तक तो हमारे को ऐसा लगता है हमारा पेट खाली नहीं हुआ।
0: तो सब अभी जो जितने भी कॉलर आ रहे हैं सब पेट से संबंधित तकलीफ को ही बता रहे हैं और अपनी इतनी देर से जो चर्चा हो रही है वो चर्चा पेट की समस्याओं का समाधान करने के लिए है।

0: तो आप इस बरसात के मौसम में एक तो सबसे जरूरी है कि बासी भोजन नहीं करें, गरिष्ट भोजन नहीं करें।
1: मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ
0: जी,
1: मैं सब्जी भी नहीं खाता हूँ।
0: तो आप दो पांच दिन का नहीं, दो पांच महीने का सोच के रखो कि ये पेट आपका डिस्टर्ब दो चार दिन में नहीं हुआ है। दो चार महीने आपने अनियमितता बरती है और आप दो पांच दिन अगर आयुर्वेदिक कोई प्रयोग करेंगे तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो मैंने प्रयोग बताया है वो प्रयोग आप दो चार महीने तक करें। इस मौसम में कद्दू आता है, खूब कद्दू खाइए, लौकी आता है, लौकी खाइए, तुरई खाइए, अपनी सब्जियों में छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालें, जीरा अच्छी तरह डालें, दाना मेथी आप उसमें डाल सकते हैं, जो भी आप सब्जी बनाते हैं उसमें दाना मेथी प्रयोग में ले सकते हैं। और तेल वाली चीजें या देर से पचने वाली चीजें या ज्यादा नमक की चीजें नहीं लें, ताकि पेट डाइजेशन कमजोर होने की वजह से जो पचावट कमजोर हो रही है वो पचे। अदरक आप काम में लेंगे, मेथी दाना काम में लेंगे तो पेट में बहुत आराम मिलेगा। और ऐसी चीजें नहीं लें जो अंदर जाके, जैसे चावल है, आलू है, भिंडी है, अरबी है, मांस है, मछली है, बासी भोजन है, ये बरसात के मौसम में नहीं खाना चाहिए। दही नहीं खाना चाहिए बरसात में। अभी 15 दिन बरसात का मौसम बाकी है, इस मौसम में आपको खाना है तो इस मौसम में खा ले, बरसात में नहीं खा ले। और सौंफ का पानी रोज रात को आप लेना चालू करें और पानी को उबाल के ठंडा करके पीना चालू करें। संक्रमित पानी बहुत बड़ा कारण रहता है बरसात में और बाकी सीजन में भी। तो एक नियम बना ले कि मेरे को कच्चा पानी नहीं पीना है, उबाल के ठंडा किया हुआ जिसमें सौंफ डाल रखी है वो पानी पीना है, तो पेट की आधी बीमारी ठीक हो जाएगी
2: जी। इस मौसम में घर की साफ सफाई भी जरूरी है, जैसे बिस्तर हैं उनमें नमी ना हो
0: जी,
2: इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक
0: है। जी जी जी जी, क्योंकि सीलन और कूलर अपन ने अभी इस मौसम में चलाया है
2: जी,
0: और एसी भी चलाया है, तो ह्यूमिडिटी सीलन बिस्तरों में भी आ जाती है। तो अगर इस मौसम के बाद थोड़ा भी अगर नमी बिस्तरों में आ रही है तो आप जब धूप निकल रही हो तो धूप में अपने बिस्तरों को धूप दिखाइए ताकि उनकी नमी कम हो जाए, और नमी कम होने के बाद उन बिस्तरों को आप काम में ले सकते हैं ताकि उसमें बदबू भी नहीं आवे और साथ में जो उनका ह्यूमिडिटी अंदर एसी की वजह से, कूलर की वजह से रह रही है वो भी दूर हो जावे। और एसी में रहने की वजह से कई सारे जीव जंतु भी बिस्तरों में पलते हैं ठंडा मौसम मिलने से। तो जब आप धूप दिखाएंगे तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, कई बार गेहूं में अपने कीड़े पड़ जाते हैं उस तरीके के, वो कीड़े गेहूं से निकल के हमारे बिस्तरों में नमी में ठंडक मिलती है तो वहां घुस जाते हैं। तो आप जब भी धूप निकले तो बिस्तरों को धूप जरूर दिखावे। ऐसे ही अपने पहनने के जो कपड़े हैं उनको भी जब भी धूप निकले, बरसात के मौसम में धूप बहुत मुश्किल से निकलती है और सीलन वाले कपड़े अपन पहन लेते हैं और उनमें नमी रहती है, तो नमी वाले कपड़े संक्रमण फंगल इन्फेक्शन शरीर में करते हैं। तो जब भी धूप निकले तो आप धूप दिखावे, और धूप नहीं निकल रही है तो आप उसको हीटर पे या गैस पे या प्रेस गर्म करके उनकी नमी को खत्म करने के बाद ही प्रयोग में ले, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही शरीर को भी सूखा रखें
2: जी।
0: हम टावल से पोंछ तो लेते हैं और तुरंत कपड़े पहन के रवाना हो जाते हैं, टावल दो रखिए, नाके निमटने के बाद आपका टावल अलग होगा और आपने शरीर अच्छी तरह पोंछ लिया है, एक बार उसको सूखे टावल से दोबारा पोंछे तो जो नमी है या थोड़ी बहुत भी पानी का अंश बॉडी में है तो वो सूखा हुआ रहेगा, तो सूखी त्वचा पर कोई भी संक्रमण तुरंत नहीं लगेगा। नमी है, गीले कपड़े हैं, फंगस लग रही है, सही तरीके से उनको सुखाया नहीं है, तो निश्चित रूप से त्वचा रोग इस मौसम में होगा ही होगा।
2: बरसात के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
0: हाँ बिल्कुल, बरसात के मौसम में बुजुर्गों को सोच समझ के चलना चाहिए, जिन

0: को जोड़ों का दर्द है, वो बारिश के सीजन में बारिश में गीले नहीं हो, बदल हो रहे हो, बिजलियां चमक रही हो और आप उस मौसम में बाहर घूम रहे हैं, तो जोड़ों में दर्द निश्चित रूप से बढ़ेगा और साथ में कीचड़ में स्लिप होने के बहुत चांस रहते हैं। तो बुजुर्ग लोगों को बारिश के मौसम में स्लिप होने से बचना चाहिए। कीचड़ में आपने पैर डाल दिया और वो साफ नहीं करे तो पैरों में बीमारियां फट जाएगी, पैरों के उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और वो खुजली पसीना आके आपको बारिश के सीजन में नायलॉन के मोजे पहन रखे हैं और वो मोजे गीले हो गए तो निश्चित रूप से पांव की पगतलियों में बुजुर्गों में ये रोग जरूर होता है और विशेषकर डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनको बरसात के मौसम में अपने पैरों को बिल्कुल साफ सुथरा सूखा रखने का प्रयास करें। देसी घी लगावे, वैसलीन लगावे, नारियल का तेल लगावे या घर में जो भी ऑइंटमेंट है उससे उनकी चिकनाहट बना के रखे ताकि रूखापन नहीं हो, पैरों में पैर फटे नहीं, पैरों की उंगलियों के बीच में फंगस इन्फेक्शन नहीं हो। उसके लिए अगर हो भी जाए तो हल्दी को आप देसी घी में मिक्स करके हल्दी का पेस्ट बना के पैरों में हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पायरेटिक सब काम हल्दी करेगी। वेसलिन में मिक्स करके रख लें या देसी घी में मिला के रख लें तो पैरों की बीमारियां फटती है या मोजों की वजह से जो एलर्जी होती है रात को, दिन भर मोजे गीले पहन के रात को खुजली हो रही है तो आप हल्दी और वेसलिन या हल्दी या देसी घी का पेस्ट बना के रख लें, उसको पैरों में लगाएं, निश्चित रूप से आपकी खुजली भी कम हो जाएगी। हल्दी वाला दूध अगर पीते हैं तो और जल्दी एंटी एलर्जी काम करेगा। प्लेन दूध ना पिए, हल्दी वाला दूध पिए।
1: जी एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे?
2: मैं प्रीति ओली कोटा से।
1: पूछिए अपना प्रश्न।
2: बेटा है मेरा
1: जी
2: 30 साल का, उसको क्या गले में बार बार कुछ खाता है तो वो खराश की हो जाती है और अभी तो फिर फीवर भी आ जाता है, अभी 2-3 महीने से ऐसा चल रहा है।
0: जी जी जी जी जी जी। तो बार बार गला खराब होने का बहुत बड़ा कारण आजकल केमिकल युक्त भोजन है। कोको कोला पी रहे हैं और फिर आप बता रहे हो कि गला खराब हो गया। टमाटो सॉस खा रहे हैं, बाजार का संक्रमित, जाने कब का बना हुआ, जाने क्या क्या केमिकल डले हुए। तो सबसे पहला तो आप उपाय ये करें कि कोई भी केमिकल युक्त भोजन नहीं कराएं, परफ्यूम डियो स्प्रे नहीं लगाए और गला ठीक करने के लिए बहुत सिंपल सा दो इंतजाम है, एक मुलेठी है और एक हल्दी। आप चाहे तो छोटे छोटे सुपारी जैसे टुकड़े मुलेठी के कर लें और उसको मुंह में दबा के रखें, न तो चूसे न चबावे, एक कोने में मुलेठी का टुकड़ा रखते रहे, मुलेठी का रस अंदर जाएगा तो गला में जो भी संक्रमण हो रहा होगा ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर गला पक रहा है, टॉन्सिल हो रहे हैं, गले में सूजन आ रही है तो दूध अगर आप पिलाते हैं तो दूध को गर्म करते वक्त चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च डाल के उबाल लें, छान लें और उस दूध को 1 मिनट में नहीं पिलावे, वो दूध को मुंह में भर के मुंह को ऊपर करके ऐसा लगे हल्दी और काली मिर्च जो हमारा स्वर यंत्र है, भोजन नली है, वहां पे जाके उस दूध को रोके। हल्दी और काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल संक्रमण निरोधक है तो तुरंत संक्रमण को ठीक करेगी। हल्दी वाला दूध पिलाइए, गला जल्दी ठीक होगा और मुलेठी चूसने के लिए दीजिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं आजकल पालतू जानवर घर में रखते हैं या पशु हैं तो बरसात के मौसम में इस बारे में भी कुछ ध्यान जानकारी।
0: पालतू जानवर बहुत बड़ा कारण है संक्रमण का।
1: जी
0: लोग घर में जानवर तो पाल लेते हैं लेकिन जैसे हम अपनी सफाई का ध्यान रखते हैं उस तरीके से जानवरों की भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे तोता हो। अपने को पर्सनल हाइजीन, अपने खुद की अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हैं ऐसे ही घर में भी।

0: कि जो पालतू पशु पक्षी है जिस जगह पे उनको हमने रख रखा है उनका पिंजरा है, उस पिंजरे को आप रोज धोइए। अपने जानवर को रोज बढ़िया निलाइए, उसमें कई बार जो भोजन के अंश बचे होते हैं वो भोजन के अंश, बहुत सारी चींटियां आ जाती है पिंजरे में, बिट्टू बंदे तो बिट्टू थोड़ी भगाएगा चींटियों को, हमको ही भगाना पड़ेगा। तो गंदगी युक्त पिंजरे में आपने तोते को रख रखा है तो वो चींटियां लाखों की संख्या में उस भोजन को प्राप्त करने के लिए आ रही है, बचा हुआ जो भोजन है वो चींटियां खा रही है। तो निश्चित रूप से वो चींटियां और जगह भी जाके हमारे घर में संक्रमण पैदा कर सकती है। जानवर है, जानवरों में बारिश के मौसम में खुरपका हो जाता है, भैंस गीले में कीचड़ में खड़ी है और आप उसके पैरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या बारिश के सीजन में कई सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो परपोषक होते हैं, जैसे जोंक लग जाती है, वो जोंक भैंस का दूध, भैंस का खून चूसती है, कई सारे मच्छर उनमें बैठे रहते हैं। बारिश की गंदगी में भैंस तालाब में घूम के आती है, पूरी गंदगी चिपका के आती है और हमारे घर में भी वो संक्रमण पैदा करती
1: जी,
0: है।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को अब अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे जरूरी बचाव, बारिश में गीला मत हो, वायु का प्रकोप रहता है तो वायु के प्रकोप से बचना है। मनुष्य का इस टाइम में बल कमजोर रहता है तो क्षमता से अधिक काम नहीं करें, ऐसी चीजें लें जो इजीली पच जाए, बासी भोजन नहीं करें, दही मांस मछली का सेवन नहीं करें। जो जमीन में उगने वाली सब्जियां होती है, अरबी है, आलू है, इनको कम से कम सेवन करें और पाचन क्षमता के हिसाब से भोजन करें, जोड़ों के दर्द साथ में खाज खुजली से बचने के लिए आपको अपने मौसम के हिसाब से पसीना ना आने दें, ये अपने को बारिश के सीजन में ध्यान रखना है।
1: जी, तो हमारे श्रोताओं को क्या संदेश आप देंगे?
0: सबसे जरूरी, बीमारी नहीं पड़ो, उसके लिए बच के रहो, शरीर की रोग क्षमता बढ़ी रहे उसके लिए आप आंवले का मुरब्बा चांदी का वर्क लपेट के सेवन करें। जो बरसात का दूषित पानी है उसको उबाल के ठंडा करके वो पानी पीने के लिए काम में ले, ऐसी चीजें ले जो पसीना नहीं छोड़े शरीर में, उमस नहीं करे, सीलन नहीं आवे, सीलन युक्त कमरे हैं तो निश्चित रूप से वो बैक्टीरिया पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे और मच्छर और मक्खियों से जनित जो बीमारियां हैं बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मक्खियों का ये प्रजनन काल होता है और इस टाइम में बहुत जरूरत से ज्यादा मक्खियां होती है, तो जो खान पान की वस्तुएं मक्खियां एक जगह से दूसरी जगह संक्रमण ले जाती है इजीली, तो आपके टॉयलेट में वॉशरूम में मक्खियों का भंडार लग रहा है और वही आपके डाइनिंग टेबल पर आके मक्खियां चिपक रही है, तो अपने जो खाद्य पदार्थ है वो मच्छरों से मक्खियों से बचा के रखें, दूषित तो नहीं होने दें, पानी उबाल के ठंडा करके पिए तो निश्चित रूप से वर्षा जनित रोगों से बच सकते हैं, और फिर भी हो जाए तो फिर चिकित्सक की सेवाएं लें और चिकित्सक को दिखाएं और इलाज लेना चाहिए, निश्चित रूप से इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है,
1: जी,
0: और सबसे जरूरी जो परहेज है, बरसात में जब उमस और सीलन होती है तो अपन को नमक की मात्रा कम रखना चाहिए।
1: जी
0: नमक ज्यादा आप खाएंगे तो नमक पसीने में से बाहर निकलेगा और वो निश्चित रूप से खुजली करेगा। उत्तेजक पदार्थ, ज्यादा मिर्ची के चीजें, थोड़ा भी खान पान में गरम मसाले ज्यादा खाने में आगे और अग्निमंद है तो निश्चित रूप से दस्त लगने की, उल्टी होने की संभावना बरसात के सीजन में जो होती है, हमारा खाना पीना

0: दूषित होगा तो निश्चित रूप से उल्टी और दस्त होंगे, साथ में चमड़ी की बीमारियां होंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण लाभप्रद जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी जी, सबको धन्यवाद। फिर भी कोई समस्या है तो कोटा में कहीं भी आयुर्वेद विभाग के जो भी चिकित्सालय हैं वहाँ के चिकित्सकों से सलाह ले सकते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से भी आप वहाँ के कॉन्टेक्ट ले सकते हैं और चिकित्सा करावे।
1: जी, हम सभी श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में भाग लिया। आप सुन रहे थे आरोग्यवाणी कार्यक्रम। आज का विषय था बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे वैद्य मृगेंद्र जोशी। हम आपको बता दें कार्यक्रम का संयोजन था हिमांशु नामा का, तकनीकी सहयोग दिया रमेश वर्मा और संजीव सोलंकी ने। FM 102.103.6 और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स समूह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब समय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि भारतीय उत्पादों और ब्रांडों को वैश्विक पहचान दिलाने का है। कल नई दिल्ली में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की गुणवत्ता, नवाचार और क्षमता को दुनिया के हर बाजार तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। श्री सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न राज्य और वस्त्र क्षेत्र के सभी धारक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये गति और तेज होगी। केंद्र, राज्य, जिले और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे।
1: सिल्क बोर्ड 26,000 मेट्रिक टन पर 2014 में प्रोडक्शन साइज था, अभी 42,000 से ज्यादा है। आने वाले दिन में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। फैब्रिकेटर से भी कहूंगा, एक लाइन तुम अपने ब्रांड का भले उस नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से

0: से एक्सपोर्ट करना शुरू करें जिससे इंडिया का ब्रांडिंग भी हो।
1: वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात को 37 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से इसका शुभारंभ करेंगे। पशुपालन विभाग ने बताया कि ये वायरस मक्खी, मच्छर और किलनियों के जरिए फैलता है। विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-2023 में इस बीमारी के कारण राज्य में लगभग 76,000 गौवंश प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सिवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भागलोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जेडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यों को गति देने के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर और मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व देने के लिए स्वामित्व कार्ड भी बांटे जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सरकार इसकी लगातार निगरानी रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाने या ईंधन टैंक के पास जमा होने के वीडियो पूरी तरह से झूठे हैं। E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन का बीमा खत्म होने का दावा भी गलत पाया गया है। सरकार के अनुसार अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है। इस कार्यक्रम से देश में कच्चे तेल की आयात में कमी आई है और 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। किसानों से खेतों और मंडियों में खुले में रखी पकी हुई फसलों और अनाज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखने की अपील की गई है। रेलवे ने यात्री अनुशासन को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। रेलवे बोर्ड आदेश के अनुसार 20 जून से देशभर में तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। जयपुर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में खतरनाक और प्रतिबंधित सामान ले जाने के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। पटाखे, गैस सिलेंडर या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में आरोपी

0: को जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा किए जाने पर पूरी यात्रा का किराया और कम से कम 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 और 3 जुलाई को होंगे। सहायक आचार्य इतिहास और पुस्तकालय अध्यक्ष के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई तक चलेंगे। सहायक आचार्य संस्कृत के लिए 6 से 16 जुलाई और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के अंतिम चरण के इंटरव्यू 6 से 10 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी के लिए सहायक आचार्य के साक्षात्कार 10 जुलाई को होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया। कहा, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 102 व 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए आप सुनिए प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद इरफान और दर्शन रावल और पलक मुच्छल की आवाजों में।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: और लीजिए फिल्म संगीत में, अब आप सुनिए राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है सुल्तान। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। चौपाल कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक बुधवार को सायं 7 बजे से 7:30 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, जिसमें आज प्रसारण का विषय होगा बरसात के समय पशुओं में होने वाली स्वास्थ्य समस्या और समाधान।

0: सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक बुधवार को सायं 7 बजे से 7:30 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, जिसमें आज प्रसारण का विषय होगा बरसात के समय पशुओं में होने वाली स्वास्थ्य समस्या और समाधान। इस पर स्टूडियो में बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कमलचंद मीणा उपस्थित होंगे। श्रोतागण हमारे टेलीफोन नंबर 29 41 142 एसटीडी कोड 0744 पर सायं 7 बजे से 7:30 तक फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: फिल्म संगीत में अब आप सुनेंगे फिल्म दबंग का ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश आप सुनेंगे। फिल्म का नाम है सिंगम। श्रेया घोषाल और अजय के युगल स्वर आप इस गीत में सुनेंगे।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

सखियों, जैसे जैसे घड़ी की सुई 9:30 तक पहुंचती है, आपसे मिलने की खुशी का एहसास बढ़ने लगता है। कुछ पलों के लिए ही सही, जी चाहता है कि वक्त कहीं ठहर सा जाए और बातों का सिलसिला बस यूं ही चलता ही चला जाए। सखियों, ये एहसास आधे घंटे ही सही, लेकिन पूरे दिन भर की ऊर्जा को, यानी हमारे पूरे दिन को ऊर्जावान बना देता है। तो सखियो, इसी ऊर्जा के साथ आपकी अपनी रेडियो सखी त्रिशा करती है आप सभी का स्वागत। सखियो, पता है, पहले आपसे मिलने की खुशी और उसके बाद में हमारी सखियों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और किस विषय की जानकारी देनी है। जी हाँ सखियो, यही तो खुशी है। जी हाँ, इस बात की जो खुशी कि मनोरंजन के लिए गाना कौन सा बजाना है और ऐसा कौन सा गाना बजाया जाए कि हमारी सखियों को पसंद आ जाए, और आज ऐसे किस विषय विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात की जाए कि आपके दिन भर की या जीवन भर में आने वाले समय में वो जो विचार हैं वो आपके काम आ जाए। तो सखियो, ऐसी ही खुशियों को हम अपनी जिंदगी में हर पल महसूस करते रहें। सखियो, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि खुशी हमारे आसपास ही होती है, बस हमें उसको महसूस करना है और उन्हीं पलों के साथ जीना है। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं सखियो, लेकिन समय के साथ जो एहसास होते हैं ना, बस जीवन की सबसे प्यारी खुशियाँ तो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे से पलों में ही छुपी होती हैं। सखियो, आज हम जो बात कर रहे हैं ना कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशियों से हम भर सकते हैं, तो चलिए करते हैं बातें और थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में चले जाते हैं या फिर हमारे बच्चों के बचपन से मुलाकात कर लेते हैं। सखियो, हम बचपन की तरफ जाएं तो घर में किसी काम को फटाफट से कर लेने पर हमारे माँ पिताजी दादा दादी के द्वारा जो शाबाशी देते हैं ना और वेरी गुड कहते हैं, तो बस बच्चों का उस छोटी सी बात से ही खुश हो जाना, या फिर स्कूल में साफ सुथरा काम करने पर, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने पर, अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने पर, जो अध्यापक द्वारा, जो टीचर्स द्वारा हमें कॉपी पर हमारे प्रोजेक्ट, हमारे अच्छे काम के लिए बच्चों को जो छोटा सा प्यारा सा स्टार बना दिया जाता है ना सखियो, कभी एक स्टार कभी दो स्टार, और वेरी गुड लिखने पर ही बच्चे कितने खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी का आलम ये रहता है कि कब हमारी छुट्टी हो, कब हम घर पहुंचें और कब हम अपनी प्यारी सी मम्मा को वेरी गुड मिलने की या स्टार मिलने की खुशी को बताना। जी हाँ सखियो, यही खुशी है जो हमारी आने वाले समय को और भी ऊर्जावान बना देता है। सखियो, ये खुशी हम कहीं तलाशेंगे या ये सोचते रह जाएंगे कि खुशी किसी बड़ी, हमारे लिए जो बहुत सारी बड़े बड़े जो काम होंगे तभी हम खुश होंगे, हमें कुछ बहुत बड़ा मिलेगा तब हम खुश होंगे, तो आप हमेशा ये याद रखिए सखियो, या मैं भी हमेशा यही याद रखती हूँ कि वो बड़ी चीज़ के इंतज़ार में हो सकता है कि हमारा समय ही निकल जाए। सखियो, हम छोटी छोटी सी खुशियों से खुश होना सीखें। सखियो, बच्चों से हमें सीखना है

بڑی خوشیوں کا سپنا سنجو کر بیٹھے رہیں گے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ سکھیوں، خوشیاں تو ہر دن ہر پل ہمارے آس پاس بکھری ہوتی ہیں، بس ضرورت ہوتی ہے اسے محسوس کرنے کی۔ سکھیوں، یدی ہم محسوس کریں گے تبھی وہ خوشیاں ہماری زندگی کو ऊर्जावान और सकारात्मक बना जाएंगी। हम कोशिश करें कि हर दिन कम से कम एक ऐसी छोटी सी बात जरूर याद रखें जिसने हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी हो। अपनों के साथ कुछ पल बिताएं, किसी की मदद करें, किसी की बात ध्यान से सुने और छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यकीन मानिए, जब हम छोटी छोटी खुशियों को संजोना सीख जाते हैं ना सखियो, तो जीवन अपने आप हल्का, सुंदर और संतोषजनक बन जाता है। सखियो सखियो, ये जीवन हमारी हर खुशियों को महसूस करने के लिए है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं सखियो, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। खुशियां तो हमारे आसपास ही होती हैं, हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। यदि हमें लगने लगे कि जिंदगी कहीं ठहर सी गई है तो इस गाने को सुनना ना भूलें, क्योंकि ये गाना आपको चलना, आगे बढ़ना सिखा देगा।

0: सखियों, इन्हीं खुशियों से आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। तो चलिए हम आपको मीनू परियानी जी की पूर्व प्रसारित ये कहानी सुनवा देते हैं, पहल।
1: टन टन टन टन स्कूल की घंटी जोर जोर से बज रही थी। स्कूल का समय समाप्त हो गया था। सभी बच्चे शोर मचाते हुए बाहर भागे। अपने अपने घर जाने की सभी को जल्दी थी। कुसुम बाहर बरामदे में खड़ी बच्चों को जाता हुआ देख रही थी। कितने मासूम और भोले थे ये बच्चे, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी स्कूल के चपरासी रामदीन ने पूछा, आज घर नहीं जाना है क्या बहन जी? अरे हाँ, बस जा ही रही हूँ, कुसुम ने हंसते हुए जवाब दिया। ये एक छोटे से गांव बालिता का सरकारी स्कूल था, जहाँ कुसुम अध्यापिका थी। अभी कुछ ही महीनों पहले उसका यहाँ ट्रांसफर हुआ था। मृदुभाषी मिलनसार कुसुम जल्दी ही स्कूल और बच्चों में लोकप्रिय हो गई थी। वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य जानकारियां भी देती, उन्हें साफ सफाई से रहना सिखाती, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, जानवर मवेशियों को बेवजह तंग ना करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्कूल में बिना नागा आना है, ये सब बातें रोज दोहराती थी। पहले पहल बच्चे, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, कुसुम की बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन प्रतिदिन दोहराने पर वे भी धीरे धीरे सीखने लगे। शाम के वक्त कुसुम गांव में घूमने निकल जाती। प्राकृतिक वातावरण, गांव की मिट्टी की भीनी खुशबू, खेतों में लहराती हरियाली, ये सब देखकर उसका तन मन प्रसन्न हो जाता। वो बच्चों के माता पिता से भी मिलती, उन्हें समझाती, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर जोर देती, उन्हें बताती आज के नए दौर में लड़कियों का शिक्षित होना कितना आवश्यक है। पर बहन जी, क्या करेंगे लड़कियों को पढ़ाकर? आगे चलकर तो उन्हें पराए घर में चूल्हा ही जलाना है ना? गांव वालों का यही जवाब होता। उनका उत्तर सुनकर कुसुम का मन बुझ जाता। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन गंवारों से माथापच्ची करती हैं? स्कूल का चपरासी रामदीन अक्सर उसे समझाता। नहीं रामदीन, मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं यहाँ हूँ अपनी कोशिश जारी रखूंगी। कुसुम अगले दिन के लिए फिर अपने आप को तैयार कर लेती। दिन यूं ही गुजर रहे थे। गर्मियों का मौसम आने को था। बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं नजदीक थी, किंतु कुसुम देख रही थी स्कूल में 6 से 12 वर्ष तक की लड़कियों ने स्कूल आना एकदम से बंद कर दिया था। उसे एक कारण समझ नहीं आया। उसने स्कूल की अन्य शिक्षिकाओं से भी चर्चा की, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब सारे जहान की खबर रखने वाला रामदीन बोला, अरे बहन जी, इस गांव में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की पुरानी परंपरा है। छोटी उम्र में ही लड़के लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, इसीलिए लड़कियों का स्कूल आना बंद हो गया है। ये सुनकर कुसुम सन्न रह गई। अभी तक उसने अखबारों में टीवी में ही बाल विवाह के बारे में देखा सुना था, पर यहाँ तो प्रत्यक्ष उसकी आंखों के सामने ये सब होने जा रहा था। वो बेचैन हो उठी। नहीं, वो इसके खिलाफ अवश्य आवाज उठाएगी। दूसरे दिन उसने अपनी प्राचार्य से बात की। देखो कुसुम, ये गांव वालों का आंतरिक मामला है, तुम इसमें दखल ना दो तो ही अच्छा है। पर मैडम, हम पढ़े लिखे शिक्षक भी इस कुरीति को नहीं रोकेंगे, तो ये तो एक तरह से उन मासूमों के साथ अन्याय होगा। जिन बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हम इस स्कूल में नियुक्त हैं, उनके भविष्य को संवारने का, संभालने का दायित्व हमारा भी तो है। हमारा काम शिक्षा देना है, कोई आंदोलन करना नहीं, कुसुम की सहकर्मी शिक्षिका ने बड़ी बेरुखी से कहा। रात भर कुसुम ठीक से सो नहीं सकी। उसने मनी मन निर्णय लिया, वो अकेली ही इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएगी, फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो। अगले दिन रही

परिवार था, वो सीधे गांव के सरपंच के पास जा पहुंची। नमस्कार बहन जी, आज सुबह सुबह। सरपंच जी ने सवालिया नजर से कुसुम का अभिवादन किया। जी जी, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए, स्कूल में कोई परेशानी है क्या? जी नहीं, वो मैं यहाँ होने वाले बाल विवाह के बारे में बात करना चाहती थी। कुसुम ने थोड़ा अचकचाते हुए कहा। देखिए, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप इन सब से दूर ही रहें। सरपंच जी ने जरा तल्ख स्वर में कहा। आप क्या चाहती हैं? आपके कहने से हम अपने रीति रिवाज भूल जाएं? हमारे पुरखों ने जो परंपरा चलाई है उसे छोड़ दें? सरपंच जी आग बबूला हो गए। पास ही बैठे सरपंच जी के नुमाइंदे भी थोड़े जोश में आ गए। आप यहाँ सही सलामत रहना चाहती हैं कि नहीं? एक ने थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला। जो भी हमारे रीति रिवाज के खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरा भी सुर में सुर मिलाकर जोश में भर उठा। कुसुम चुपचाप वहां से चली आई, लेकिन उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। जो गलत है उसे वो कैसे सही मान ले, कैसे कैसे वो रोके ये सब। ये सब सोचते हुए उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन छुट्टी थी, सवेरे का सूरज सिर पर चढ़ आया था। कुसुम काफी देर तक सोती रही। 9 बज चुके थे। उसकी महरी चंपा, जो उसके घर के काम के साथ साथ उसका खाना भी बनाती थी, अभी तक आई नहीं थी। करीब 11 बजे वो आई। तब तक कुसुम नहाकर नाश्ता कर चुकी थी। क्या बात है चंपा, आज इतनी देर से? उसने चंपा से पूछा। अरे का बताएं दीदी, वो सरपंच जी के छोटे भाई की बिटिया है ना, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। क्यों क्यों, क्या हो गया? अरे पिछले ही साल लड़की का ब्याह किया था और जवाई बस जरा से बुखार में ही चल बसा। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। कितनी बड़ी है उनकी बिटिया? अरे अभी तो 12 बरस की भी नहीं हुई है बिचारी, बाल विधवा हो गई। राम जाने जिंदगी कैसे कटेगी। ठगी सी खड़ी रह गई कुसुम, मानो वज्रपात हो गया हो। इतनी छोटी सी उम्र, एक मासूम कली सी बच्ची जिसका कहीं कोई दोष नहीं, सिर्फ रिवाजों के नाम पर जिसकी बलि चढ़ा दी गई। शोक प्रकट करने वो भी सरपंच जी के घर पहुंची। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। लड़की की माँ पछाड़े खा रही थी। इतनी मासूम गुड़िया सी उनकी बिटिया सहमी हुई माँ से चिपक कर बैठी थी। कुछ सोचकर कुसुम फिर से सरपंच जी के पास पहुंच गई। आप मेरी बात को गलत मत समझिए, वर्षों से जो कुप्रथा हमारे बच्चों का भविष्य नष्ट कर रही है, क्या आप अब भी उसे बदलना रोकना नहीं चाहेंगे? ये जो अनिष्ट हो गया है, देख रहे हैं ना आप, बताइए इस सब का जिम्मेदार कौन है? पंचायत के सदस्यों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सभी सर झुकाए चुपचाप बैठे थे। उसने फिर हिम्मत करके कहा, सरपंच जी, ये जो आज आपके परिवार के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी तो हो सकता है, तो आप चाहती क्या हैं? जी मैं चाहती हूँ आज शाम आप सभी गाँव वालों की एक सभा बुलाएं। अपनी तरफ से मैं उन्हें समझाने का सिर्फ एक मौका चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, पर आप अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद करेंगी? बरसों से चली आ रही प्रथा को खत्म करना चाहती है, कोशिश कर लीजिए, सरपंच जी ने कहा और शाम को सभी गांव वालों को स्कूल के मैदान में इकट्ठा होने की मुनादी करवा दी। गांव के सभी स्त्री पुरुष शाम को मैदान में उपस्थित थे। सभी उत्सुकता से कुसुम की ओर देख रहे थे। हिम्मत करके कुसुम ने संबोधित किया, गांव के सभी छोटे बड़ों को प्रणाम, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। आज आप खेती किस तरीके से करते हैं? नई नई जानकारी लेते हैं, ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, अच्छे से अच्छा बीज लगाते हैं, हमारे कुओं पर मोटर है उससे सिंचाई करते हैं, एक गांव के व्यक्ति ने जोश में भर कर कहा। तो मतलब नए जमाने के साथ चलते हैं, हर नई तकनीक का उपयोग करते हैं और करना चाहते हैं? कुसुम बोली, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपके दादा परदादा भी ऐसे ही करते थे? अरे नहीं, वो तो पुराना जमाना था, तब इतने साधन इतनी सुविधाएं कहाँ थी। यानी कि हमें जमाने के साथ चलना चाहिए, आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सहमत है। अपनी फसल के पकने पर ही तो उसे काटते हैं या अत्यकी को काट लेते हैं। कुसुम की बात सुनकर सब हंसने लगे। कैसी बात करती हो बहन जी, कभी फसल भी अधपकी काटी जाए है क्या भला? एक महिला बोली, बिल्कुल सही, जब फसल को पकने के बाद ही काटते हैं तो अपने बच्चों की शादी,
इस कच्ची और

0: अपरिपक्व उम्र में क्यों करते हो? कुसुम की बात सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। वो फिर बोली, आप सभी जानते हैं बाल विवाह आज एक सामाजिक अपराध है, एक ऐसी कुप्रथा जिसका खत्म होना अत्यंत आवश्यक है। छोटी उम्र में किए गए विवाह के दुष्परिणाम आपके आसपास सामने ही मौजूद हैं। हरिया की बेटी का बच्चा पैदा होते ही मर गया, देखिए उसकी बेटी रक्त की कमी का शिकार है। नंदू की भतीजी का दूल्हा बीमारी से चल बसा और वो मासूम बाल विधवा का शापित जीवन जीने को मजबूर है। केसु के दामाद ने शहर में जाकर दूसरी शादी कर ली और उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इतने सारे उदाहरण आपके आसपास मौजूद हैं, फिर भी आप अपने लाडले लाडलियों को बाल विवाह के नाम पर कुर्बान करना चाहते हैं। आपकी जान से प्यारे इन बच्चों का भविष्य बनाना अब आप सबके हाथ में है। इन्हें पढ़ने दें, बढ़ने दें, इनके बचपन को इनसे ना छीने, सही उम्र आने पर ही इनका विवाह करें। बस आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, इसमें आपका और आपके बच्चों का ही भला है। यह कहकर कुसुम चुप हो गई। पूरी सभा में एक तनाव भरा सन्नाटा छा गया। तभी गांव की एक महिला अपनी छोटी सी बेटी का हाथ पकड़कर सामने आई और कुसुम के पास आकर खड़ी हो गई। बहन जी, मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि मेरी बेटी पढ़े, बड़ी होने पर ही उसकी शादी हो, पर मेरा परिवार और मेरा पति, लेकिन अब मैं अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं होने दूंगी, आपने मेरी आंखें खोल दी है। फिर धीरे धीरे चार पांच महिलाएं अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर कुसुम के साथ खड़ी हो गई। सरपंच जी हैरान थे, गांव के पुरुषों में फुसफुसाहट होने लगी। कुसुम मन ही मन घबरा रही थी, किंतु ऊपर से वो संयती रही। मैं आप लोगों में कोई बगावत नहीं फैलाना चाहती हूँ, ये तो एक अच्छे काम की शुरुआत है जिसे आप लोगों को ही सहमति से करना है। कुसुम ने अपने साथ खड़ी महिलाओं को देखा, उसकी पहल पर कुछ कदम उसके साथ चल पड़े थे। धीरे धीरे ये कदम कारवां में बदल जाएंगे, इसका विश्वास उसे हो चला था। कुछ दिनों बाद कुसुम ने अखबार में पढ़ा, बालिता गांव के लोगों द्वारा बाल विवाह का बहिष्कार। चलो धीरे धीरे ही सही, अगर इस कुप्रथा का अंत हो जाए तो उसकी पहल सार्थक हो जाएगी। मन ही मन इस ख्याल को सोचकर कुसुम मुस्कुरा उठी।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी मीनू परियानी जी की पूर्व प्रसारित कहानी पहल।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सखियो, आज है 24 जून और 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं। ये दिवस वैश्विक स्तर पर शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। सखियों, आज महिलाएं राजदूत, विदेशी नीति विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिनिधि के रूप में विश्व मंच पर अपनी प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। उनकी भागीदारी से निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावशाली बनती है। सखियों, आज के इस दिन पर हम कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करें और महिलाएं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, उतनी ही मजबूती हम परिवार में भी देखने को मिलती है। तो सखियों, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते जाएं। और जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं और ऐसे में जब मन कहीं

सखियो तेजरा मीणा जी के निर्देशन में हिमांशु नामा जी के संयोजन में आपकी अपनी रेडियो सखी त्रिशा ने प्रस्तुत किया आपके लिए महिला जगत कार्यक्रम। दीजिए इजाजत।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।
1: आना आधी जाना इंतजार है तेरी।
0: फिल्म मुल्क।
2: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर हम सा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: ए बेखबर।
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो,
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज्यादा देता है।

0: लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
1: जी।
0: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
1: जी,
0: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए। और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
1: जी जी।
0: ये 1984 का जमाना था।
1: कितने बड़े थे आप?
0: मैं 71 में पैदा हुआ।
1: ओ, तब तो बहुत छोटा।
0: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था, 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है। तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
0: जो पान में सुपारी खाई जाती
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी, जी।
0: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ। और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में
1: जी, जी, जी।
0: या उसको समझने में या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन कर,
0: हाँ, कर दिया ऑन। और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
1: बज रही थी।
0: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
1: क्या बात,
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं,
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: मैं, हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने,
0: मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम।
0: हाँ, तो वो, हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई। और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई, पहली गजल मैंने उसी दिन कही। और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा, मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा। तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, खत्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है।
1: हाँ।
0: क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना,
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म

0: क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की?
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है।
1: क्या बात है।
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना जरूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है जख्म भरते ही
0: जी।
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है
0: जी जी।
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसेटिव प्राणी है
0: जी।
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख

0: एक नहीं था मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल।
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता,
1: बिल्कुल सही बात,
0: जितना अधिकार आपका आपके बाप के यहाँ।
1: बिल्कुल।
0: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहां पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है। तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था,
1: चल रही थी,
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
1: जी।
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे। और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ
1: जी।
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
1: जी,
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की
1: जी जी जी।
0: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
1: जी,
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं। वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है,
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर,
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह,
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह,
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है
1: जी,
0: हम उसको बहुत आसानी से, उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको, नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है,
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है यार।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी का।
0: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है,
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था
1: जी जी।
0: तो तो

उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी मामू से, अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं।

0: से और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से, एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था, जैसे मैं गणित में कमजोर था और जो धार्मिक पढ़ाई होती है दीनियात कहते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था उसमें कमजोर था, बाकी सब में राइटिंग वगैरह में आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं।
1: हाँ, तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में।
1: जी, सूरत में। तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
1: जी,
0: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था और ये बात है 1994 की
1: जी, शीन काफ निजाम भी आया था इसमें।
0: शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था
1: जी।
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है
1: कुंडली आपकी पता है लेकिन हमें श्रोताओं तो कुछ आया तो
0: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
1: जी,
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीन काफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
1: जी, सब जी।
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे मुल्क में। संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं
1: जी जी।
0: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे के होटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद प्रूफ करने का समय था। हाँ, हाँ,
0: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीन काफ निजाम साहब से शायद मिला होगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, क्योंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच। वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी
1: जी।
0: और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था उसको

0: के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
1: क्या बात है,
0: है ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुनाया जाता था
1: जी, जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: ओहो, क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है। अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना, और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतला सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए।
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर, नहीं करते।
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी, जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है,
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही कहा हो जाए।
1: क्या बात है बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी, जी।
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जाते दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी, जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बंबई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।

0: आबाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रहे।
0: अरे वाह।
1: तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का जमाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने
1: जी। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास, कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं, और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो।
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका, उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी।
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी।
0: अच्छा,
1: कभी
0: ये बात तो नहीं पता,
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है। हाँ। बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था।
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती है या कलकत्ता में रहती है, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
0: भीड़
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी।
0: जी।
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खासतौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त आए।
1: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहां पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं

0: आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब। फिर भी वहां जाता हूं मैं, वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूं, वो जो स्कूल जहां पढ़ता था वहां जाता हूं अकेला और उसको फील करता हूं, मैं सिर्फ फील करता हूं खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है। बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
0: हाँ। तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी, जी।
0: तो मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया, है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है।
1: हाँ।
0: फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी।
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब

0: गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह,
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी,
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी,
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर।
1: वाह,
0: ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह, क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम सुन रहे थे श्री राम भजन चंदन दास की आवाज में। राजेंद्र राजवंशी ने इसे लिखा और सरस्वती कुमार दीपक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे स्वर बहार एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने, अनजान के बोल और श्याम शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
5: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
4: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
5: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
4: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
5: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
4: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और सुनते हैं रंग तरंग का अगला नगमा नुमाइश एल्बम से। पंकज उदास की आवाज है, जफ्फार गोरखपुरी ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने।

0: सीमा शर्मा का गाया हुआ ये नगमा हम सुन रहे थे। दलीप ताहिर ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में गीत गजल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में, जिसे बेनी सतामकर ने संगीतबद्ध किया है। सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

पे मुकर्रर की आवाज आई तो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा सफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदे गिरती रहती है। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है,

0: संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भू विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करती।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।

0: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग दीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।

0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
2: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
2: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल

0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
3: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
3: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
3: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
3: जी,
0: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश

0: लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। FM 102.3 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी गोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनु रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा कुछ ही देर के बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अधिकारियों के साथ पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में अधिकारियों ने रिफाइनरी से उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के नमूने प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करती ये महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी। साथ ही पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, केमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर राजस्थान को विनिर्माण और औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगी। बैठक के

0: बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1500 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रॉमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं जेडीए नगर निगम स्वास्थ्य बिजली पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से करेंगे। पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से लोगों की यात्रा आसान हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। बूंदी शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत गढ़ पैलेस में शहनाई वादन से हुई। इसके बाद गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। इस अवसर पर पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय सहायक जगदीश वर्मा ने बताया कि बूंदी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रानी जी की बावड़ी, सुख महल और 84 खंभों की छतरी पर पर्यटनों और आमजन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदीवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने बूंदी को राजस्थान की अतुल्य सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गौरव का अनूठा प्रतीक बताया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थी और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस का असर बरकरार है। राजधानी जयपुर में आज सुबह कई जगह हल्की बरसात हुई। भरतपुर में भी सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: बातें लिखी हैं, वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं माँ तो माँ होती है। बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दी है और कहती है कि अब ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवाना, अनगिनत ड्रेस श्रृंखला है। और इन सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते। काफी श्रोताओं ने बता दिए तो गाने वो बता नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात जरूर कही है कि आज

तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो जरूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ। और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी न किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा, उस मन की बात को हमसे कह दीजिए। और सुनिए ये वाला नगमा।

हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को, शकील बदायूं ने लिखा।

और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल, रेशम, ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिजाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिजाइन करते थे। अभी ड्रेस डिजाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था, थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मजेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पेंट पतली टांगे लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम आज साड़ी पहन, शर्माई बड़ी खूबसूरत सी बात हो, लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौगजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती है साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर जमाने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखते हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फवे फवे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्तु को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज्यादा बड़ी होती थी जी। वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था पहन नहीं पाए। तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज्यादा अपनाया है, ज्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं देखिए क्या है, ये जो चीजें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा, अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और

उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉग वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स, मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल, गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं, रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे। बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से बात याद आई, 1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और

1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी. फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखा कर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना. क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है. और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन. क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है. उन्हें घूंघट में, फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को. और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली ही वीना रॉय ने पहनी है. और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है. क्या बात है. हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे. महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी. बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी, वह उनके साथ गई. साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए. तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई. तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए. और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी, यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी उसी को देखकर बनाए. बहुत बढ़िया बात है, ये भी अपने आप में प्यार है. और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं. अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी. और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में. और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे. तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं. अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं. पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे. और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आंख बंद कीजिए. आंख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, जरा उसका नाम लिख दीजिए. ये बात पुरुष और महिला दोनों श्रोताओं पर लागू होती है. कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, जरा उसका नाम हमें लिख भेजिए. तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम.

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आंख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें, आँख खोलने के लिए तो कही, हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नजरों में कृति सेनन भी है, और कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आंख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती है, तो ब्रह्मचारी में मुमताज की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उनके धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहां कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और, कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती

0: हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहनाकर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझ कर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े बोली सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो विक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहां भी घूमने गए वहां पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहां की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना, आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिजाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी, जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहां के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूलकर आ गए, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही है। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते बहू जापान गई थी तो वहां की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछते थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछते थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फोटो खिंचाई है और किसी

बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं। क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती है बॉबी फिल्म का याना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी। नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी में भी बहुत फैशनेबल रहे हैं। वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है। और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी, इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं। जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीजें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है। और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं? सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा कि इसके गायक कलाकार कौन है। आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है, तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे, वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियां पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है, और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब भी मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियां, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत

होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूंगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद है, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में, वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी, तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन है, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिजाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियां हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।

0: रहा है।
1: ऐसा नहीं है कि पड़ोसी केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी

0: मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
0: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
0: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी।

0: श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है।
0: उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के

0: नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों राग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम. सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ. और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है. आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए. नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूं आपके सामने।
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होंगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपनी टीवी।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
2: या है? फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते, तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके होंगे
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
2: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है, और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
2: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
2: भी है ना। जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
2: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना, तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
2: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इलकल साड़ी के,
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
2: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं, किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
1: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहाँ थोप देते हैं। और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण

0: न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त
0: समय और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए,
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया,
1: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ होती
1: हैं। हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियाँ और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियाँ होती है, तो कर्नाटक की साड़ी इल्कल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी, है
0: ना? बहुत सुंदर साड़ियाँ होती है और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है और इन्हीं में से एक है इल्कल साड़ी, जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इल्कल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इल्कल नगर से है और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इल्कल साड़ी पड़ा और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इल्कल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इल्कल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेली तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इल्कल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इल्कल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इल्कल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का नाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इल्कल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसरों, त्योहारों या विशेष अवसरों इसमें पहनने की परंपरा रही है और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इल्कल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इल्कल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी

0: कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और से और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन जा सकते।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
1: उतना ही समय में साड़ियां भी पहन उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा
0: उसकी बात कुछ और होती है ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतु की बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है,
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको ऐसी कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया। तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए, और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है। तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया, समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती है।
0: और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही, और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम है।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है, और समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।
1: तो वो एक गलत है, वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी,
1: की भाषा
0: का। आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है, हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा।

0: आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: यानी पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी, यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: सब कुछ बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली, कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा, यानी जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना, मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि के तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ लें, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है, इसलिए सोशल

0: मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
1: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
0: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने, और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों और सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए या एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए, आज
0: इस
1: नहीं
0: साल
1: तो कल,
0: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी।
1: जिंदगी
0: और इतना सुंदर

0: जीवन है मिला है,
1: हम खत्म कर दीजिए
0: जी। तो बच्चों को ये हमें, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए, ये डिश आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहेंगे, ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर ला के देंगे या दो चार दिन बाद ला कर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें
2: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
2: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का,
0: कि गाना सुनाना चाहिए।
2: सुना

0: जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर 1 छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकते हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं,
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं
0: जी।
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघलकर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुंह में पानी आ गए। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
1: क्या
0: अच्छा
1: बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी
0: है। अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4-5 कप पानी है, 4-5

0: इलायची फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वहीं एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सूखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और उसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सूखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
0: और अब क्या करना है?
1: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
0: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता अभी भी आता है।
1: उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा

0: कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहां ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्पररी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई।
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
0: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
0: जी जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
0: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण से मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाए। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भाई

0: हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें 5 फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ। मैंने उस वक्त फिर बनाया जो चित्र था, एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली, और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा। किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते हैं?
0: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपने जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी। चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे?
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते।

0: थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे, वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है, तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर. अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है. एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की. तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से.
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे. तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहां से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उनके गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में. तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है. वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें. तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ. तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है. और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं. जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं. तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है. कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय की?

0: आप कहीं गए हो और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था। अब मेरे लिए जो रंग है वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना ज्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
1: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
0: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
1: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीजें नजर आने लगती हैं, कई रूप भी नजर आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नजर आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है
0: जी।
1: किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नई कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
1: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
0: मौसम फिल्म का गाना है
1: जी। हाँ,
0: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहां से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमंच शो था बंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्य हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चस्य हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ।

0: वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी तो काफी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
1: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
0: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था तो इतनी ज्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में और वहां पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सकी और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैंप नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे, ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो
0: मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी है, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर है वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूं, ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त, वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
0: जी,
1: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली,
0: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
1: हाँ।
0: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है, तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो पांच सात है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा, तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने

0: जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी जी,
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो, तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी
1: जी।
0: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी, तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहां पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहां कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 who declined ट्रिनाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है,
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था। क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, मगर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
0: जी, वो। जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना।
0: बिल्कुल।
1: तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला

0: वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी, जी।
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
1: जी, सुनते हैं
0: ये वाला सुनता।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीजें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें? उसे
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाए तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताइए।
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर

0: हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते,
1: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है
0: वो
1: जी। इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब हमारे स्थानीय कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त इशिका। आप सभी का दिल से स्वागत है इस शानदार, मजेदार और जानकारी से भरपूर शो में।
0: जी हां दोस्तों, अगले कुछ घंटे हम रहेंगे आपके साथ, आएंगे हम लेकर आए आपके लिए ढेर सारी रोचक बातें, कुछ खास जानकारियां, बेहतरीन संगीत और ढेर सारी मस्ती।
1: तो चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो या फिर सफर पर, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज का शो होने वाला है एकदम शानदार।
0: और दोस्तों, अगर आपका दिन थोड़ा सा थका थका लग रहा है तो चिंता मत कीजिए क्योंकि हम लेकर आए हैं मुस्कान, उत्साह और पॉजिटिव एनर्जी का पूरा पैकेज।
1: तो बढ़ाइए आवाज अपने रेडियो की और तैयार हो जाइए मनोरंजन के इस खूबसूरत सफर के लिए।
0: तो चलिए दोस्तों, युववाणी की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको आज के पहले गीत की ओर।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और आज आपके साथ है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं शिका
1: और मैं स्वर्णिम।
0: तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात कर लेते हैं आज के

0: ए संवाद पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो हमारे भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकती है, और वो है निवेश की आदत युवावस्था से ही।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज का युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। अच्छी शिक्षा, बेहतर करियर, अपना घर और आर्थिक स्वतंत्रता हर युवा का सपना होता है। लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए केवल कमाई ही नहीं बल्कि सही समय पर निवेश करना भी आवश्यक है।
0: और दोस्तों, निवेश का अर्थ है अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य की जरूरतों और लक्ष्यों के लिए सोच समझ कर लगाना। युवावस्था में निवेश शुरू करने का सबसे बड़ा लाभ है समय। जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाता है उतना ही अधिक लाभ चक्रवृद्धि अर्थात ब्याज के रूप में मिलता है।
1: दोस्तों, मान लीजिए कोई युवा हर महीने थोड़ी सी राशि भी नियमित रूप से निवेश करता है तो आने वाले वर्षों में वही छोटी राशि एक बड़ी पूंजी का रूप ले सकती है। इसलिए कहा जाता है कि निवेश में राशि से अधिक महत्वपूर्ण है समय पर शुरुआत करना।
0: और दोस्तों, निवेश की आदत युवाओं में वित्तीय अनुशासन भी विकसित करती है। ये उन्हें अनावश्यक खर्चों से बचना और अपनी आय का बेहतर प्रबंधन करना सिखाती है। साथ ही ये भविष्य की आकस्मिक परिस्थितियों जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में भी सहायता करती है।
1: बिल्कुल सही कहा जी का। दोस्तों, आज डिजिटल युग में निवेश के अनेक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन निवेश करने से पहले जानकारी प्राप्त करना, अपनी जरूरतों को समझना और नियमित रूप से बचत करने की आदत विकसित करना बेहद आवश्यक है।
0: इसलिए दोस्तों, याद रखिए, भविष्य सुरक्षित करने का सबसे अच्छा समय कल नहीं बल्कि आज है। छोटी शुरुआत भी बड़े परिणाम दे सकती है, इसलिए युवावस्था से ही निवेश की आदत अपनाइए। तो चलिए दोस्तों, आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और बेहद बेहद बेहद प्यारा गीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे संवाद की ओर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है, और वो है आत्मसम्मान और दंभ, यानी एरोगेंस में अंतर। अक्सर लोग आत्मसम्मान और दंभ को एक ही समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा स्वर्णिम। और दोस्तों, आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं के प्रति सम्मान और अपने गुणों, क्षमताओं तथा मूल्यों पर विश्वास रखना। आत्मसम्मान व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है और अपनी योग्यता को पहचानता है।
0: लेकिन साथ ही दूसरों के सम्मान और अधिकारों का भी ध्यान रखता है। आत्मसम्मानी व्यक्ति विनम्र होता है, सीखने के लिए सदैव तैयार रहता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता।
1: और दोस्तों, दंभ या अहंकार वो भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। दंभी व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का अत्यधिक प्रदर्शन करता है और दूसरों की भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं देता। उसे अपनी कमियां दिखाई नहीं देती और वो आलोचना स्वीकार करने से भी बचता है।
0: और दोस्तों, यदि आत्मसम्मान व्यक्ति को ऊंचा उठाता है तो दंभ उसे भीतर से कमजोर बनाता है। आत्मसम्मान से संबंध मजबूत होते हैं, जबकि दंभ रिश्तों में दूरी पैदा करता है। आत्मसम्मानी व्यक्ति सफलता मिलने पर भी संतुलित रहता है,
1: बिल्कुल,
0: जबकि दंभी व्यक्ति सफलता को अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मान बैठता है।
1: और दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मसम्मान आवश्यक है, क्योंकि ये हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच प्रदान करता है। लेकिन दंभ से बचना भी उतना

0: ही जरूरी है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति की प्रगति और संबंधों दोनों को नुकसान पहुंचाता है।
1: बिल्कुल। इसलिए दोस्तों आइए हम अपने भीतर आत्मसम्मान को विकसित करें, विनम्रता को अपनाएं और दंभ से दूर रहें, क्योंकि सच्ची महानता दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि अपने आचरण से सम्मान अर्जित करने में है।

FM 101.6 पे सुन रहे हैं आप आपका मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। अब चलते हैं कार्यक्रम में आगे और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: लंबे इस रिवर फ्रंट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राजस्थान की भव्यता को प्रदर्शित करता है।
1: बिल्कुल, यहाँ बने आकर्षक घाट, विशाल प्रतिमाएं, सुंदर चट्टाने और मनमोहक प्रकाश व्यवस्था पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर बनाए गए अनेक थीम आधारित घाट भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति और स्थापत्य कला की झलक प्रस्तुत करते हैं। शाम के समय रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ ये परिसर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता।
0: और दोस्तों, चंबल रिवर फ्रंट का एक विशेष आकर्षण यहाँ की संगीतमय फाउंटेन शो और नौका विहार की सुविधा है। पर्यटक नाव में बैठकर चंबल नदी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं और यादगार अनुभव प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल शिखा, ये रिवर फ्रंट केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि कोटा की नई पहचान बन चुका है। ये शहर के आर्थिक और पर्यटन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आकर इसकी भव्यता और सुंदरता का अनुभव करते हैं। और दोस्तों, इसी प्रमुख पहचान है 225 फीट ऊंची चंबल माता की विशाल प्रतिमा।
0: और दोस्तों, इसी के पास स्थित किशोर सागर झील, जिसे सभी कोटा वाले KST बुलाते हैं, और झील के बीच बना जग मंदिर पर्यटकों का विशेष रूप से आकर्षित करता है। और सच में दोस्तों, बोटिंग करते वक्त जग मंदिर का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है।
1: बिल्कुल, और KST के किनारे ही बना हुआ सेवन वंडर्स पार्क भी पर्यटकों की पहली पसंद है। यहाँ विश्व के 7 अजूबों की सुंदर प्रतिकृतियाँ बनाई गई हैं, जिनमें ताजमहल, एफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रमुख हैं।
0: और दोस्तों, प्रकृति प्रेमियों के लिए गरड़िया महादेव किसी स्वर्ग से कम नहीं। ऊंची चट्टानों से दिखाई देने वाली चंबल नदी की घुमावदार धारा और चारों ओर फैली हरियाली बहुत सुंदर लगती है।
1: और साथ ही इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटक कोटागढ़ और राव माधो सिंह संग्रहालय का भ्रमण कर सकते हैं, जहाँ राजपूत कालीन संस्कृति, चित्रकला और शाही विरासत की झलक देखने को मिलती है।
0: और दोस्तों, इसके अलावा चंबल गार्डन, अभेड़ा महल, सिटी पार्क और कंसुआ महादेव मंदिर भी कोटा की पर्यटन पहचान को समृद्ध बनाते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों, अगर आप कोटा से बाहर से सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप हमारे शहर कोटा जरूर आइए, क्योंकि कोटा में जो बात है वो कहीं और नहीं।
0: और दोस्तों, इसी के साथ मैं एक और बात आप सभी को कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोटा आए और इन स्थलों पर घूमें तो कोटा की कचौरी खा के जाना ना भूलें।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए दोस्तों, फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा गीत।

तो दोस्तों, इस प्यारे से मूड को रिफ्रेश कर देने वाले सॉन्ग के बाद बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी कि रंग रंगीलो राजस्थान की ओर।

0: दोस्तों रंग रंगीलो राजस्थान में आज हम आपको राजस्थान के हाड़ौती अंचल के प्रमुख शहर हमारे कोटा की सैर पर ले चलेंगे। चंबल नदी के तट पर बसा कोटा केवल शिक्षा नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है।
1: और दोस्तों कोटा का सबसे आकर्षक स्थल है चंबल रिवर फ्रंट, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। चंबल नदी के किनारे विकसित यह भव्य रिवर फ्रंट आधुनिक वास्तुकला, कला, संस्कृति और पर्यटन का शानदार संगम है। लगभग 3 किलोमीटर

0: अपन झट पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों, FM 102 103.6 पे सुन रहे हैं आप आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। मेरे साथ मैं आपका दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त इशिका।

0: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर।
1: दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो विश्व में शांति, सहयोग और समानता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
0: दोस्तों, हर वर्ष 24 जून को ये दिन मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2022 में इस दिवस को मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि कूटनीति को इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेसी। दोस्तों, डिप्लोमेसी वो माध्यम है जिसके द्वारा देश आपसी संवाद और सहयोग के जरिए समस्याओं का समाधान खोजते हैं, युद्ध के बजाय बातचीत और समझदारी का मार्ग अपनाने पर जोर देते हैं।
0: और दोस्तों, लंबे समय तक कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही, लेकिन आज महिलाएं राजदूत, विदेश मंत्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं।
1: बिल्कुल शिखा, और हमारा भारत भी इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीय महिलाओं ने विदेश सेवा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाए रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब महिलाओं को शांति वार्ताओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है ना, तो समझौते अधिक प्रभावी और लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, महिलाओं की भागीदारी से विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं जिससे बेहतर और संतुलित निर्णय लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सभी महिलाओं के योगदान का सम्मान करें और ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां हर महिला को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने और नेतृत्व करने का अवसर जरूर मिले।
1: बिल्कुल शिखा। तो दोस्तों, ये था नॉलेज कॉर्नर का पहला टॉपिक। आकाशवाणी पे आप सुन रहे हैं युववाणी। अब कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: परियों को कभी किसी ने देखा तो नहीं, उनकी खूबसूरती शायद ऐसी होगी।

0: तो दोस्तों, इस बेहद प्यारे गीत के बाद बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और बात कर लेते हैं हमारे नॉलेज कॉर्नर के अगले विषय पर।
1: दोस्तों, आज 24 जून को हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक और शिक्षाविद पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं।
0: दोस्तों, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकारों में अपनी पहचान बनाई।
1: वे अपनी भावपूर्ण गायकी और संगीत के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया।
0: और दोस्तों, उन्होंने संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के प्रथम डीन रहे और संगीत को एकेडमिक लेवल पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: साथ ही उन्होंने संगीत विषय पर काफी सारी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से संगीतांजलि विशेष रूप से उल्लेखनीय है और उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मान प्राप्त हुए।
0: और दोस्तों, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जीवन भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आइए आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करने और उनके योगदान का स्मरण करने का संकल्प लेते हैं।
0: तो दोस्तों, आइए फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं एक और प्यारा गीत।

खान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों आइए फटाफट से बात कर लेते हैं नॉलेज कॉर्नर के अगले विषय पर।
1: दोस्तों आज हम भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
0: दोस्तों वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को वर्तमान उड़ीसा के बराहमपुर में हुआ था। उन्होंने आयरलैंड में शिक्षा प्राप्त करी और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर भारत लौट आए।
1: बिल्कुल, वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे तथा विशेष रूप से श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों के लिए कार्य किया। इसी कारण उन्हें भारत के प्रमुख श्रमिक नेताओं में गिना जाता है।
0: और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे यूपी, केरल और मैसूर के राज्यपाल रहे और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने।
1: दोस्तों 1969 में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उनका कार्यालय 1969 से 1974 तक रहा। देश और समाज के प्रति उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1975 में भारत रत्न, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया।
0: और दोस्तों साथ ही वीवी गिरी जी का निधन 24 जून 1980 को हुआ। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके सादगीपूर्ण जीवन, लोकतांत्रिक मूल्यों और श्रमिक कल्याण के प्रति समर्पण की याद दिलाती है।
1: तो आइए दोस्तों इस अवसर पर हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक नेता और पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

0: तो दोस्तों, अब हमारी स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि शाम के 6 बजने वाले हैं, यानी कि अब वक्त आ चुका है आप सभी से विदा लेने का। फिर से मुलाकात होगी युववाणी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपके दोनों रेडियो दोस्त, मैं इशिका
1: और मैं स्वर्णिम।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युववाणी FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन

0: अमल और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो रहे हैं। सुरभि मेहता की आवाज आपके साथ। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला नगमा हम सुनेंगे फिल्म क्वीन का, और ये नगमा गाया है सोनू कक्कर, नेहा कक्कर और लाम जंजुआ ने, जिसे शब्द दिए हैं अन्विता दत्त ने और संगीत से, खूबसूरत संगीत सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

संगीत का आनंद ले रहे हैं आप श्रोताओं, और अब जो नगमा आने वाला है वो बहुत खूबसूरत सा नगमा होने वाला है। आइए अब सुनते हैं एक अमेजिंग सी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी का एक नगमा, जिसे अली जफर और साथियों ने गाया है। शब्द दिए हैं इरशाद कामिल ने और संगीत सोहेल सेन ने।

5:30 बजे से 6 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें दिनांक 25 जून 2026 गुरुवार को प्रसारण का विषय रहेगा समन्वित कीट प्रबंधन, तथा इस पर स्टूडियो में बातचीत के लिए विशेषज्ञ श्री अजय शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र उपस्थित होंगे। श्रोतागण, हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 0744-294-1142 पर प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक फोन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम संबंधी सूचना यहां समाप्त हुई, धन्यवाद। आइए अब हम चलते हैं फिल्म संगीत के अगले नगमे की ओर। चेन्नई एक्सप्रेस का अगला नगमा हम सुनेंगे सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह नीति मोहन की आवाज में, जिसमें शब्द दिए हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है विशाल एंड शेखर ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। चौपाल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि गुरुवार यानी कि कल शाम

आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। चौपाल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि गुरुवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक यानी कि कल सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें कल यानी 25 जून 2026 गुरुवार को प्रसारण का विषय रहेगा समन्वित कीट प्रबंधन। स्टूडियो में बातचीत के लिए विशेषज्ञ श्री अजय शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र उपस्थित रहेंगे। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर 07442941142 पर फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम संबंधी सूचना यहां समाप्त होती है। आइए सुनते हैं मेट्रो फिल्म का नगमा सोहम की आवाज में, शब्द सईद कादरी के और संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। थोड़ी देर में आप जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों की आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन को रवाना किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की जनजागरूकता के लिए ब्रांडिंग ऑटो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजधानी जयपुर के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे।
1: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
0: समारोह में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का माध्यम बन रहे हैं।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा, साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर हुई पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय बैठक में कही। श्री शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। बैठक के दौरान HRRL प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न उत्पादों के नमूने भेंट किए गए। गौरतलब है कि रिफाइनरी से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 5 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना के साथ प्रवेशोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने अपने क्षेत्र में घर घर संपर्क कर जन समुदाय को खिलौना बैंक की जानकारी देंगी। 3 से 6 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का चिन्हीकरण कर अभिभावकों को 1 जुलाई के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को सुबह 9 बजे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक का शुभारंभ होगा। RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने आज जयपुर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात की। श्री बागड़े ने उनकी शिष्टाचार भेंट थी। गौरतलब है कि आयोग के सदस्य श्री केसरी सिंह को हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA

0: इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में डोंबिवली के शार्दुल शेखर विचारे ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अभिनव सतीश ने दूसरा और तीर्थ जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का मुख्य परिणाम आज जारी हो सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज हुई बैठक में वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम का अनुमोदन किया गया। इस बीच बोर्ड ने आज सुबह कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नतीजे जारी किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 1967 में पासपोर्ट अधिनियम लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा और सशक्त नागरिक के संकल्प को दोहराना है। देश 2014 में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या के साथ 77 था, जो अब बढ़कर 545 हो गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छोटे और दूर दराज के शहरों के लोगों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके। हाल ही में हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि देश में पासपोर्ट की बढ़ती तादाद बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या बढ़कर 138 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट मुहैया कराने की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। ये विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है।
0: भारतीय सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सेना तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाने और आपदा के समय नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के संगराना 24 और 25 आरबी गांवों से इस ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। डीग जिले के कामा क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के शिकार लोग तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा कर पैदल जा रहे थे। सभी घायलों को कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक हुई इस घटना से भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। प्रदेश में प्री मॉनसून की बरसात कई जिलों को भिगो रही है। आंधी बारिश की गतिविधियों के कारण पिछले कई दिनों से प्रदेश में हीट वेव से राहत बनी हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में अब तक 25 जिलों में असामान्य बरसात हुई है। 3 जिलों में अधिक पानी बरसा है, वहीं 3 में सामान्य और 9 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल उदयपुर को छोड़कर सभी संभागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार हैं। 28 जिलों में येलो और श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इस बीच आज हनुमानगढ़ में दोपहर बाद मौसम बदला और धूल का गुबार छा गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि वीरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग, ग्वार, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा।

0: देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन की ओर से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। आयोग ने बताया कि इस वर्ष की चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद विजेता स्टार्टअप को 3.5 लाख रूपये का सीड ग्रांट मिला। वहीं उपविजेताओं को 2,20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों को आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बीकानेर जिले में इन दिनों जल संरक्षण, शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, कृषि, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। मॉनसून की आहट के बीच किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनेक रेल परियोजनाओं और रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों पर काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। दोनों मंत्रियों ने आमजन के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन में योग के महत्व पर बल दिया। योग दिवस से पहले भी जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेद विभाग के विद्यार्थियों ने जूनागढ़ किले और पब्लिक पार्क में योगाभ्यास कर लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जूनागढ़ किले में सामूहिक योगाभ्यास किया। अधिकारियों और जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। जिले में आयोजित हो

0: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आम जन को राहत पहुंचा रहे हैं। शिविरों में लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भूमि संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रमाण पत्रों और लोगों की अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। रामसरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में घुमंतु सासी समाज के कुछ परिवारों को निशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान किए गए। वर्षों से स्थायी आवास के अभाव में जीवन यापन कर रहे इन परिवारों को अब अपना घर बनाने का आधार मिल गया है। लाभार्थियों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया। उधर पशुपालकों के लिए भी सेवा शिविर उपयोगी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कई पशुपालकों ने अपने दुधारू पशुओं का बीमा कराया। पांचू क्षेत्र के बंदड़ा गांव में आयोजित शिविर में पशुपालकों को योजना की जानकारी दी गई और मौके पर ही बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों, जैविक संसाधनों के उपयोग और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि विभाग द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए कृषि सखियों और प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचा सके। जल संरक्षण को लेकर भी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, बारिश के पानी का संचयन और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई। लोगों को पानी के संरक्षण और जल स्रोतों की देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला परिषद परिसर में एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्री डूंगरगढ़ में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया जावेला। और देश माए नहना और दूर दराज रा शहरा री जनता ताई पासपोर्ट रो सुविधा पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्र रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे समाचार विगतवार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर विधानसभा हलका माए विकास रा 631 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला कामा री शुरुआत कीनी और पूरा भ्या काम जनता ने सौंपया। ई मौके राखी जा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री नालियां री सफाई सारू सुपर सकर मशीन, कचरो भेड़ो करण री नुवी मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन ने रवाना कीनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 रा बारा माए जाग जगावन रा मकसद ब्रांडिंग ऑटो रिक्शा नई हरी झंडी बता रवाना कीना। श्री शर्मा पात्र लोगा ने जमीरा हक वाला स्वामित्व कार्ड ई दीना। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री कहो कि सरकार राजधानी जयपुर रा विकास सारू लगातार काम कर रही है। वे बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत करेला।
2: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की

0: हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
1: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां रो जिक्र करता थका मुख्यमंत्री कहियो के ए शिविर जनतारी परेशानियां तुरंत आगीकरण रा जरिया बन रहा है।
0: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, चार दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, पांच दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
1: कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर रे सांसद मंजू शर्मा समेत जनता रा कई नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मारा रहवास माथा अहलकारा सागे मीटिंग कर पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम रे प्रगति रे बारा माए विगतवार जानकारी लीनी। मीटिंग में श्री शर्मा कहो के पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान देश री ऊर्जा हिफाजत रो मजबूत खंभो बनवा सागे प्रदेश रो ग्रोथ इंजन साबित हुएला। राज्य रा आंगनबाड़ी केंद्र में 3-6 साल उम्र ताई रा बच्चा सारू शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रो खास अभियान चलाई चियो है। महिला और बाल विकास विभाग री ओर 5 जुलाई ताई चलाया जावन वाला ई अभियान रा तहत आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक खोलन सागे प्रवेशोत्सव और पौधा रोपण रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक वासुदेव मालावत बतायो कि 30 जून ताई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकारी मदद घर घर जार खिलौना बैंक री जानकारी दी जावेला। इस आगे 3-6 साल ताई रा स्कूल नी जा रहा बच्चा ने पिछाण कर वारा मायता ने 1 जुलाई ने आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक री शुरुआत रा कार्यक्रम सारू न्योतो दियो जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग रा कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाव बागणे शिष्टाचार भेंट कीनी। आयोग रा सदस्य केसरी सिंह ने हाल ही माए कार्यवाहक अध्यक्ष री जिम्मेदारी दीरीची है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI मई 2026 में लीरी GCA इंटरमीडिएट परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। परीक्षा में डोंबिवली रा शार्दुल शेखर विचारे अव्वल रहा, अभिनव सतीश दूजी और तीर्थ जैन तीजी थोड़ माथे रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। बोर्ड रा अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रो मुख्य परिणाम रो ऐलान ही आज जारी भेवन रा आसार जताया। वे बतायो कि आज भी मीटिंग में VDO परीक्षा रा अंतिम परिणाम ने मंजूरी दे दी री जी। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत है AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ओ दिन साल 1967 में पासपोर्ट कानून लागू हेवन री याद माई मनायो जावे है। इनरो खास मकसद सुरक्षित पासपोर्ट, आसान सेवा और मजबूत जनता रा संकल्प रो दोहराव है। पासपोर्ट सेवा दिवस रे बारा माई पेश है समाचार कक्ष सालेहा गाजी री रपट।
2: पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र री पहुंच लगातार बधाई जा रही है, जिनो नाना और दूर दराज रा शहरा रा लोगा ने ये आसानी पासपोर्ट मिल रहा है। हाल ही माए व्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन माए विदेश मंत्री SJ बतायो कि देश माए पासपोर्ट री बढ़ती तादाद उम्मीद माए बढ़ोतरी रो दर्शाव करे है। माली साल 2025-26 माए पासपोर्ट री तादाद बढ़ 138 लाख वेगी। वे बतायो कि पासपोर्ट मुहैया करावण री प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। आ विकसित भारत

0: अणावण रा काम माए प्रेरणा देवण वाली खास ताकत रा तौरों काम कर रही है।
1: फौज री ओरों श्री गंगानगर जिला रा सरहदों लाग्योड़ा संगराना 24 और 25 आरबी गांवां माए जनता माए जाग जगावण और सुरक्षा सहयोग मजबूत करण रा मकसद नु वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाई चियो है। इन जरिए शंका लायक हलचल री जानकारी फौज ताई पुगावण री प्रक्रिया बतावण और आपदारी भगत जनता और फौज बीच मदद बधावण रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। वो कार्यक्रम 30 जून ताई चालेला। डीग जिला रा कामा हलका माए आज एक तेज जा रही कार करीब 10 जना ने टक्कर मार दीनी। कार री फेंट माए आया लोग तीर्थराज विमल कुंड री परिक्रमा कर और पैदल जा रहा हा। जख्मी लोगा ने कामा रा सरकारी अस्पताल माए भर्ती कराई चिया। चठों घना जख्मी 5 जना ने भरतपुर रा आरबीएम सफाखाना माए रेफर कर दिया चिया। कार चलावन वालों मौका फरार फेंक्यो। अरबे मौसम प्रदेश का कई हलका माए चौमासों पहली री बिरखा वेवणु गर्मियों साता मिली है। जल संसाधन विभाग मिली जानकारी रे मुजब ई महीना माए हाल ताई राज्य रा 3 जिला माए बत्तो 3 माए सामान्य और 9 जिला माए सामान्य कम में बरस्यो। मौसम विभाग आज ही 20 जिला माए गरज चमक सागे बरसात वेवण सारू चेतायो है। महकमारा मुजब उदयपुर रे अलावा बाकी संभागा माए काली कठे कठे आंधी बारिश रा आसार है। 28 जिला माए येलो और श्री गंगानगर चूरू और बीकानेर जिला माए बरसात रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। इबीचे आज हनुमानगढ़ माए दोपहरा पाछे मौसम पलट कियो। माणी खबर नवीस बतायो के वठे मोकलो धूलो उड्यो।
2: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि वीरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग ग्वार मूंगफली बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी आकाशवाणी समाचार हनुमानगढ़।
1: आज बूंदी जिला रो 785 स्थापना दिवस मनाई चियो। ई मौके जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग री ओर भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। ऐतिहासिक गढ़ पैलेस माए शहनाई बजावण और गणेश पूजन रा कार्यक्रम राखी चिया। स्थापना दिवस रा सिलसिला माए देसी परदेसी सैलानिया ने खास स्मारक माए मुफ्त दाखिलो दियो चियो। हॉकी इंडिया 5-14 जुलाई ताई ब्रिटेन रा दौरा सारू 24 सदस्यों वाली जूनियर महिला टीम रो ऐलान करती नो है। खेदेम शिलेमा चानू टीम री कप्तान बनाई ची है। भारत री टीम नुआ कोच टिम व्हाइट री अगुवाई माए जूनियर एशिया कप समेत आवती अंतर्राष्ट्रीय होड़ा री तैयारी रा सिलसिला माए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड माए 7 मैच खेलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-11-7800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले रहो सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए बेगाई खिलौना बैंक शुरू करया चावेला। देश माए नाना और दूर दराज रा शहरा नी जनता ताई पासपोर्ट रो सुबितो पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्र रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: FM 102 103.6 MHz

और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब हमारे किसान बहन भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुन बाड़ा संधा कास्तकार बण भाया कताय शशि भाई कैडी सु घणी घणी राम राम। किसान बण भायाओ ई भगत माल खेत में खरीफ फसला में धान की रुपाई को काम चाल रो। किसान भाया ने सोयाबीन मक्का मूंग उड़द की बुआई की भी तैयारी कर मिली छे। असम में खेती से ज्यादा उत्पादन लेनो छे तो वैज्ञानिक सोच रखता हुए नवीन कृषि तकनीक काम में लेवा जिससे खर्चो छोटो और मुनाफा मोटो हो सके। नवीन कृषि तकनीक की बात करा तो सोयाबीन की फसल की बुआई ऊंची बेड़ बनाकर करा जिससे ज्यादा पानी पड़ पा फसल में नुकसान न हो। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ावा कर लेकर हरी खाद लगावा फर्ती फसला करा और पशुपालन अपनावा। पशुपालन की बात करा तो बरसासु किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करता आ रहा छे। कूड़ी का आगे जपया दो बल किसाना की खेती का सारथी बनकर काम कर रहा छे और आज भी पशुपालन केवल गांव ढाणी में रोजगार न दे रहे हो बल्कि किसान की आमदनी बढ़ावा के में भी कारगर साबित हो रहे छे। खेती और पशुपालन की बात करा तो दोनों एक दूसरा का पूरक छे। जी खेत की मिट्टी स्वस्थ रहेगी उनकी फसल भी बढ़िया होगी। अब बात आओ छे के कस्या तोल पड़ा का मिट्टी को मिजाज कस्यो छे तो इनको पतो करवा कर लेकर सबसे सटीक उपाय छे मिट्टी परीक्षण। नियमित मिट्टी का परीक्षण करवा बासु खेत में कस्या पोषक तत्व की कमी छे वहाँ की तोल पड़ जाओ छे और खाद उर्वरक का संतुलित उपयोग से कमी कताए पूरा करो जा सके छे। तो ध्यान रखना वैज्ञानिक तरीका से खेती करा मिट्टी की जांच करावा और आधुनिक पशुपालन अपनावा जिससे लागत घटे और उत्पादन बढ़े। इनके साथ ही किसान बन भाया बरसात को मौसम भी शुरू हो चुके हो ऐसे में पशुपालक भाया कर लेकर पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा घनी जरूरी हो जाओ छे। तो ये विषय पर ज्यादा जानकारी लेवा कर लेकर आज मैंने सजीव फोन इन चौपाल कार्यक्रम में आमंत्रित करो छे डॉक्टर कमलचंद मीणा जी कताई। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का रूप में पशुपालन विभाग बारा में अपनी सेवा दे रहे छे तो आप सभी के एडिशनल डॉक्टर साहब को कार्यक्रम में स्वागत कराए। डॉक्टर साहब राम राम।
1: राम राम सर। राम राम।
0: का हाल चाल छे डॉक्टर साहब?
1: बढ़िया साहब। शशि भाई अभी देखो बारिश हो रही है और काश्तकार भाई लागे खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का भी विशेष ध्यान देना ही
0: चाहिए। बिल्कुल तो, जरूरी तो
1: बिल्कुल
0: दोनों एक दूसरा का साथी चाहिए।
1: बिल्कुल साथी एक दूसरा का पूरक है और खेती और पशुपालन तो चोली आंचल का चोली दामन का साथ है साहब। बिल्कुल
0: तो किसान बहन भाइयों ये विषय पर ज्यादा जानकारी आप ले वो चाहो चो तो आप सीधा चौपाल में फोन करके डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सको चो। चौपाल में फोन करवा कर लेके वही आपने जाने पहचाने नंबर 2941142। नंबर एक बार फिर बता दिया 2941142 एसटीडी कोड 0744। डॉक्टर साहब किसान बन भाया का फोन को इंतजार रहो वहां तक हमारा मन में कुछ सवाल आ रहे थे तो सबसे पहले सवाल तो आपसे या पूछबो चाहूंगा बारू यो बरसात को मौसम छे तो यू कह चे बरसात के पहले टीका जरूर लगवानी चाहो पशुओं का।
1: बिल्कुल शशि भाई देखो अभी बरसात शुरू होने वाली है और बहुत से एरिया में तो बारिश छुटपुट बारिश हो भी रही है तो ये जो पहली बारिश होती है जब जमीन में जो चारा उगता घास वो बहुत खतरनाक घास होती है तो उसके बचाव के लिए अभी एक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। तो वो टीका सब किसान भाई जागरूक है, समय समय पर जानकारी मिलती रहती है उनको। तो आप अपने पशुओं को अभी टीके जरूर लगवाएं। सबसे पहला टीका गलघोंटू का टीका जिसको गलडेटा की बीमारी बोलते हैं अपने देसी भाषा में, HS का टीका गड़ करके और जानवर उसमें 99% मरता ही है और वो टीका सरकारी पशु चिकित्सालय सब सेंटरों पर निशुल्क मिलता है और अभी घर घर जाके हमारे टीकाकरण कर्मी जो है कंपाउंडर डॉक्टर घर घर जाके वो टीकाकरण कर रहे हैं जानवरों का।
0: बिल्कुल बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: आप अपने पशुओं के ये टीका जरूर लगवाएं।
0: और डॉक्टर साहब इनके अलावा कई तरह की और भी बीमारियां रहे और भी टीका चल रहे जैसे खुरपका मुंहपका को टीको
1: बिल्कुल
0: यो कब लगवाए जाओ छे?
1: अभी देखो किसान भाइयों अभी आपने देखा होगा खुरपका मुंहपका जिसको अपन रोगड़ा बोलते देसी भाषा में, जानवर के पैरों में छाले हो जाते, मुंह से लाड़ आने लग जाती, जानवर चारा पीना छोड़ देता, दूध कम हो जाता है तो उसके टीके 6-6 महीने में लगते हैं। सरकार की तरफ से निशुल्क टीके लगाए जाते हैं। अभी 15 तारीख

0: अभियान खत्म हुआ, फिर अभी 6 महीने बाद वापिस एफएमडी के अभियान शुरू हो जाएगा। अभी 7वां अभियान पूर्ण हुआ है, उसमें हमारे हाड़ौती संभाग में 90% पशुपालकों ने एफएमडी के टीके लगवाए।
1: तो अभियान में जैसे घर घर जा टीका लगाओ छे,
0: बिल्कुल घर घर डोर टू डोर
1: है ना,
0: घर घर जाके पशुपालक के घर पे जाके, क्योंकि आजकल क्या सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, उसका टीका लगाएंगे, उसके कान में टैग लगाएंगे, 12 डिजिट का एक टैग होता है, बिल्ला चल्ला लगाएंगे, फिर उस जानवर का फोटो लेंगे, पशुपालक के आधार से अपडेट करेंगे, फिर उसको ऑनलाइन करेंगे।
1: बहुत बढ़िया चाहिए। और डॉक्टर साहब यह भी समझ में चाहूंगा कि यो अभियान तो खत्म हो गयो पर कोई पशुपालक पशुओं का टीको न लाग पायो, तो वो अस्पताल में जा रही ये टीका का तय लगवा सके?
0: बिल्कुल लगवा सकता, वो कह सकता साहब हमारे जानवरों के टीके नहीं लगे, तो वो अब अभियान का इंतजार करना पड़ेगा उसको, अब 4 महीने बाद वापिस टीके लगा सकता हूँ। क्योंकि हम घर पे जाते हैं तो पशुपालक कहते साहब मेरे जानवर गया बन है, इससे दूध सूख जाता, पशुपालकों में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही है, तो साहब हमारे गया बन जानवर के लगाते ही या तो जानवर गया फेंक देता, दुधारू जानवर लगाने दूध सूख जाता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टीका सब तरह से माप तोल पर खरा है, न तो इससे कोई जानवर का एबोर्शन होता, न दूध कम होता, न जानवर में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट है। अपन जानते हैं जब किसी जानवर को टीका लगता है, या आपने भी टीका लगता था कोरोना लगाई, जैसे कोरोना में तो बुखार आती थी, तो टीका लगने के बाद अगर बुखार आती है तो इसका मतलब टीका सही साबित होता है।
1: हाँ, बहुत बढ़िया बात की। डॉक्टर साहब एक और बीमारी को नाम सुने चो, लंपी।
0: बिल्कुल साहब, लंपी LSD, ये लंपी स्किन डिजीज है, ये इतनी घातक बीमारी थी, आज से 3 साल पहले पश्चिमी राजस्थान में इतनी खतरनाक आई थी महामारी के रूप में, हजारों लाखों की तादाद में पशु खत्म हो गए थे, सरकार ने उसका मुआवजा भी दिया था, तो अब सरकार ने उसके लिए पहले ही तैयारी कर ली है, प्रिकॉशन सावधानी, तो आप बीमारी आने से पहले ही टीके लगवा ले। तो आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है LSD की, 24/6/2026 से।
1: बिल्कुल, ये अभियान का बारे में और बात करेंगे एक किसान साथी जी से, राम राम कराचा। हेलो, हाँ राम राम साहब।
2: राम
0: राम साहब, राम राम।
1: आपको शुभ नाम?
2: शुभ नाम कालीजा।
0: काली भाई बोलो साहब, कहाँ से बोल रहे थे?
2: बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलो।
2: हमारा क्वेश्चन जो है मतलब बाढ़ का कीड़ा तो मार देगा, पर अंदर का कीड़ा मरे उन्होंने एक दवाई बता देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपने अच्छी बात करी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो जानवरों के पेट के कीड़े अंदर की कीड़े मारने की दवाई आती है एल्बेंडाजोल, आप नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाओ और वहां से आपको निशुल्क दवाई मिलेगी। डॉक्टर साहब या कंपाउंड साहब वहाँ का जानवरों के पेट का कीड़ा मारवा की दवाई दियो, वो आपको निशुल्क आपका नाम लिखे आपको निशुल्क दवाई देंगे, एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, ऑक्सीक्लोजनाइड है, बहुत तरह की दवाई आती है, तो आप नजदीकी चिकित्सालय में जाके और ये दवाई ले लें।
1: बिल्कुल।
2: और एक और क्वेश्चन जो मतलब मनुष्य जैसे
0: जड़ नपट गए, ये भी देखो आप, ये बहुत सारी परेशानी ऐसी आती है कि जानवर की डेफिशिएंसी कमजोरी, अगर जानवर ज्ञापन होता तो उस जानवर को आप दाला बांटा और खल बिहाने के बाद खिलाते हो, जबकि जानवर को बिहाने के 2 महीने पहले से अगर आपको खुराक चालू कर दोगे तो ये समस्या नहीं आएगी आपके जड़ पड़ने की और बिहाने में।
1: बिल्कुल।
0: जानवर को नमक या बन जानवर को नमक मत दो, ब्याने के बाद जब आप खड़ देते हो खड़ के साथ जानवर को आप एक मुट्ठी नमक रोज दो, नमक बहुत जरूरी है जानवर को।
1: बिल्कुल, पण ज्ञापन की टाइम मत,
0: ज्ञापन की टाइम मत दो, इससे ज्ञाप फेंकने का खतरा रहता है, ब्याने के बाद दो आप, भले आप डेली नमक दो, जानवर के नमक बहुत जरूरी, जानवर को 15 से 20 ग्राम नमक प्रतिदिन जानवर को देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: उस
0: है हाँ डेली दो एक मुट्ठी नमक आप जानवर को, और मोटा पिसा नमक मत दो, मोटा डली वाला नमक आता वो आप जानवर को खड़ बांटे में डाल दो, खड़ गड़ाओ उसमें डाल दो, नमक बहुत जरूरी जानवर को, इससे दूध भी बढ़ेगा आपके, जानवर चारा पानी भी खुल के खाएगा और पानी भी खुल पिएगा।
1: जी बिल्कुल, राम राम साहब। हाँ डॉक्टर साहब, लंपी की बात हो रही थी, कहीं को अभियान बारिश से शुरू हुए
0: किसान भाइयों, आज 24 तारीख है और आज राजस्थान सरकार ने श्रीमान मुख्यमंत्री जी द्वारा आज लंपी स्किन का पूरे राजस्थान में उद्घाटन किया गया है, आज से लंपी की शुरुआत की है। इसमें आपके जितने भी गोवंश है, ये लंपी डिजीज केवल गोवंश से जानवरों में होती है, भैंसों में बहुत कम होती है, गाय बछड़े बछड़े में ज्यादा होती है, तो आप अपने जानवरों के जितने भी जानवर है आप नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके अपने कंपाउंड या डॉक्टर साहब से कह के साहब मैं लंपी का टीका लगवाना चाहे, वो आपके घर पे आके निशुल्क आपके एलएचडी का टीका घर पे आके लगाएगा।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी की भी बात हुई, तो बरसात

0: में एक लाख बाकी कत्ती संभावना रहे।
1: बिल्कुल साहब, देखो अभी जैसे बारिश होगी तो बरसात का पानी गड्ढों में पानी भरेगा, ज्यादा बाहर का पानी पिएगा, जो घास चारा उगता जमीन में नया चारा होता है उसमें बहुत सारे कीटाणु जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, तो उस चारे को खाते ही जानवर बीमार हो जाता है। तो उसके लिए आपको जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई देना जरूरी है। पेट के कीड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट, एक होता बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट। तो ये आपको दोनों तरह की दवाई एक ही दवाई से मिल जाएगी। आप नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके आप अपने जानवरों के लिए बाह्य परजीवी अंतः परजीवी की दवाई लाके आप अपने जानवरों को दे सकते हो।
0: बिल्कुल, एक किसान साथी जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब,
1: अंतः परजीवी दवाई जो है ये जानवर के लिए इतनी कारगर साबित है, इससे जानवर मतलब ये एक नहीं जानवरों में से बहुत सारे फायदे। जानवर चारा पानी सही खाता, उसके पेट में कीड़े नहीं पड़ते, जानवर दुधारू जानवर दूध बढ़ता उसका, बहुत से इस अंतर परजीवी से जानवर ज्ञापन तक नहीं होते, बाद जानवर रह जाते हैं। और मैंने इस गांव में देखा है कि अच्छे अच्छे सात सात साल का जानवर हो जाता है, उसके बाद भी वो जानवर ज्ञापन नहीं होता। यही वजह है कि वो जानवरों को अंतर परजीवी की दवाई देते ही नहीं है, इस वजह से परेशानी आती है।
0: तो बिल्कुल, और यो समय चाहिए, समय पे एक बार तो दे दे, और साल में कितनी बार?
1: साल में देखो किसान भाइयों, साल में तीन मौसम होते हैं अपने, सर्दी गर्मी और बरसात। जैसे मौसम की शुरुआत होती है, जैसे बरसात शुरू होने वाली है तो आप इस टाइम दे दो, फिर निश्चिंत हो जाओ चार महीने तक, फिर आप दो अक्टूबर में, जैसे अपनी सोयाबीन की फसल कटेगी उस टाइम दो, फिर उसके बाद आप दो मार्च में। तो साल में आपको तीन बार तो कम से कम पेट के कीड़े मारने की दवाई आपको देना ही है, ये तो जरूरी है ही मान लो आप।
0: और ऊपर भी जैसे पानी में बैठ जाओ तो कोई जोका लाग जाओ, चींचड़ा चढ़ जाओ।
1: अभी इस गर्मी में जो चींचड़ों की इतनी प्रॉब्लम हुई थी जानवरों को, अच्छे डेयरी वाले जानवरों को, और लोग बाग कहते साहब हमारे तो जानवर के जुए चींचड़े पसुए उड़ने वाले कीड़े बहुत भयंकर प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ क्या करती लोग पब्लिक अवेयरनेस जागरूकता अभाव, अपने जानवरों को अगर समय समय पर देख रेख करेंगे अपन, उनको समय समय पर पेट के कीड़ों की बाह्य परजीवी की दवाई अगर देंगे तो अपने जानवरों को इस समस्या से निजात मिल सकता है। बाह्य परजीवी की बात करते हैं तो अपन को हर पशु चिकित्सालय में निशुल्क साइपरमेथिन जो पानी में घोल के पोचा किया जाता है वो मिलती है, कीड़े के रूप में मिलती है, जैसे आयरमेक्टिन आती है, इसको दे दो आप तो बाहर के कीड़े जो चींचड़े और अंदर के कीड़े दोनों ही मर जाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बरसात को यो मौसम चे तो देखा चाहे पशुओं में कई तरह की समस्या हो जाए,
1: बिल्कुल,
0: तो आवास को कई महत्व रहे, आवास बढ़िया रह तो पशुओं में मतलब समस्या कम आवे।
1: बिल्कुल, अभी देखो किसान भाइयों, अभी तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा तो दुधारू जानवरों में दूध भी कम हो रहा। अब बहुत सारे किसान पशुपालक हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब जानवर दूध कम दे रहा, मेरा दूध कम हो गया साहब, चारा खड़ भी फूल खा रही है फिर भी दूध कम हो गया। ये इसी वजह से होता है कि अपने जानवर को प्रॉपर जो उसको बैठने की जो उसकी जगह होती है उसकी साफ सफाई, उसका बाड़ा, उसका पानी, उसका दाना और खाना, ये उस पर अपन ध्यान नहीं देते हैं। और अपन उसको जैसे दो किलो खल डाल रहे हैं अपने दूध निकाले, ऐसा नहीं करें। अभी जानवर को आप खुराक में ये जो कंसेंट्रेट फीड होता है सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं अपन संतुलित पशुहार, आग अपर पशु को दुधारू पशु को संतुलित पशुहार देते हो तो जानवर का दूध कभी भी कम नहीं होगा।
0: बहुत बढ़िया चे। और डॉक्टर साहब संतुलित पशु आहार की आपने बात करी तो इमें कई कई चीजें शामिल रहे, और किसान या पशुपालक भाई इक खुद भी तैयार कर सके।
1: साहब संतुलित पशु आहार ऐसा पशु आहार पूरक जो उसमें सब चीजें समायोजन होता सबका। अब जैसे दूध के अंदर कैल्शियम होता, फास्फोरस होता, फेट होता, मिनरल्स होता, आयरन होता, जो ट्रेस एनिमल ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो सब होते हैं। तो ये जो पूरक संतुलित पशु आहार है इसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस तो मेजर है ही सही, पर जो छोटे छोटे तत्व होते हैं वो भी इसके अंदर पूरक मात्रा में मिल जाते हैं, जिससे जानवर को सफिशियंट आहार मिल जाता है और जानवर की शरीर की पूर्ति हो जाती है।
0: बिल्कुल, कई पशुपालक भाई यह बताता रहे चक भाई दूध तो बढ़िया दे रही है पर उमा फेट की मात्रा कम आ रही है, तो बाजार से यो लियाओ वो लियाओ, तो इनका बारे में आप कहेंगे?
1: बिल्कुल, अगर आप पशुपालक भाई अभी जैसे गुजर भाई ये दूध बेचते हैं ये फेट बढ़ाते हैं, ये क्या करते हैं जैसे फेट बढ़ाने तो गुड़ और तेल देते हैं, अगर आप अपने जानवरों को गुड़ और तेल का मिश्रण दोगे तो आप उससे फेट लो ना, आठ आठ नौ नौ की फेट आती है भैंसों में।
0: बिल्कुल, बहुत बड़े। हेलो हाँ डॉक्टर साहब फोन कट गए, बाद में बात होगी।
1: पशुपालक भाई फेट बढ़ाने के लिए सब कहते हैं साहब हमारे जानवर फेट कम आती है। फेट कम आने का कारण क्या होता है, अपन एक ही तरह का बांटा जानवर को देते हैं।
0: हाँ।
1: जैसे यहाँ पर अपने कांकड़ा खल दे रहे हैं, बराबर कांकड़ा खल देते जाते हैं। मैं पशुपालक

0: को से कहना चाहता हूँ उसको मिश्रण आहार दे, उस जानवर को कंसंट्रेटेड फीड भी दे, संतुलित आहार भी दे, हरा चारा भी दे और सूखा चारा भी दे। अगर उसको आप सारी चीजें मिला के खिलाओगे तो उसको उसके दूध में फर्क पड़ेगा और जानवर का दूध भी बढ़ेगा और किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। एक किसान साथी जी, हेलो हेलो, आज तो बात ही ना हो पा रही डॉक्टर साहब, लगातार वो भी प्रयास कर रहे थे, आपन भी अट्टी सु प्रयास कर रहे थे कि बात होगा वहां को प्रश्न अपने पास आओ और आपको समाधान बता पाओ। इनका साथ ही डॉक्टर साहब बात यह भी हो चुके भाई पशुओं में और भी बीमारियां रह चे।
0: बिल्कुल,
1: तो थनेला रोग का बारे में भी सुनी रहे
0: अपने हाड़ौती संभाग में सबसे ज्यादा परेशानी है, मेजर प्रॉब्लम है समस्या बाज की। यहाँ जानवर तो दो दो पांच पांच दस दस बीस बीस जानवर मिल जाएंगे।
1: हाँ।
0: पर वो समय पे ज्ञापन नहीं होते।
1: नो।
0: किसान को बहुत आर्थिक नुकसान होता, वो उसको 12 महीने ठलोट जानवर को चारा खिलाता, वो खाली को न वो ज्ञापन है न दूध देता है, तो वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो मैं तो पशुपालकों से कहता हूँ, अभी सरकार ने इसके लिए कैंप चालू कर रखे हैं, बाज निवारण शिविर, हर पशु चिकित्सालय में, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे और गौशालाओं में ये शिविर हर महीने आयोजित किए जाते हैं। अगर आपके जानवरों में ऐसी कोई समस्या होती है बाज की, तो आप नजदीकी पशु चिकित्सालय मिलके उसका समाधान और उपचार करवाएं।
1: बिल्कुल। एक किसान साथी जी, हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? तो आवाज ना आ पा रही,
0: आवाज नहीं आ रही
1: डॉक्टर साहब। और भी आपसे यह जान बचाऊंगा कि पशुओं को बीमो कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल साहब, अभी देखो राजस्थान सरकार ने एक बीमा पॉलिसी जारी करी है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जो 2025-24 में चल रही है और 2025-26 अभी चल रही है। इसमें आपके दुधारू दो जानवर का आप बीमा निशुल्क करवा सकते हो और अभी भी समय है, अभी भी चल रहा है। आप अपने मोबाइल से खुद ही आप पंजीकरण कर सकते हो। पंजीकरण करने के बाद संबंधित डॉक्टर के पास वो पहुंच जाता है और वो अपनी साइट खोलेगा, आपका घर पे बीमा करने आ जाएगा वो।
1: बिल्कुल,
0: निशुल्क बीमा होता है 40,000,
1: है ना,
0: 40,000 रूपये का। अभी मैंने बीमे कर रखे है 1200 बीमे कर रखे है, अभी मेरे भी कम से कम 50 जानवर मर चुके हैं इस सीजन में। मैंने एक एक पशुपालक को, किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 35,000, उनके खाते में सीधे पैसे आते हैं,
1: बहुत
0: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत।
1: साची बात कर दी डॉक्टर साहब। और एक और महत्वपूर्ण सूचना किसान बन भाया के तय दे दिया, किसान बन भाया खाल की चौपाल में आप सजीव फोन इन कार्यक्रम सुन पाओगे शाम की 5:30 बजे से 6 बजे तक। और ये कार्यक्रम में विषय रहोगे समन्वित कीट प्रबंधन और जानकारी देगा श्री अजय शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र अंता जिला बारा। तो आप भी कार्यक्रम में फोन करके अपना प्रश्न पूछ सको जो फोन करवा के लेकर फोन नंबर 2941142 STD कोड 0744। समय एक बार फिर सुन लो, गुरुवार का दिन 25 जून 2026 शाम की 5:30 बजे से 6 बजे तक। यह सूचना समाप्त हुई डॉक्टर साहब, बातचीत का तय आगे बढ़ाओ। डॉक्टर साहब आपसे यह भी जान बुझाऊंगा कि सरकार भी कई तरह की योजना ले रहा हो चे, पशुओं के लेकर भी लाओ चे, किसानों के लेकर भी लाओ चे, तो इस समय पर पशुपालक भाइयों के लेकर सरकार के डिसो कसी कसी योजना चल रही है।
0: किसान भाइयों, सरकार के मनसा के पशुपालन से किसानों की आय दुगनी करने की, अब किसानों की आय दुगनी करने का सरकार बहुत प्रयत्न करती है। किसानों को समय समय पर सब्सिडी, समय समय पर ये पशु किसान KCC NLM एक योजना चल रही है, नेशनल लाइव मिशन स्टॉक NLM योजना चल रही है, उसके अंदर पशुपालकों को 50 लाख तक का लोन दिया जाता है डेयरी फार्म के लिए, बकरी पालन के लिए, सुअर पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, उसमें 50% की सब्सिडी दी जा रही है। अभी अपने कोटा संभाग में केवल 2 ही फाइल मंजूर हुई है 50-50 लाख की, एक तो झालावाड़ में बागेर के पास है हरिगढ़ और एक इकलेरा के पास, जबकि अपने कोटा, बाना और बूंदी में किसान भाई इसमें रुचि नहीं ले रहे, जबकि इसमें 50 लाख तक की लोन है और 25 लाख तक की छूट है, सब्सिडी है।
1: बिल्कुल। एक किसान साथी को फोन आ रहे, राम राम कराचा। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ राम राम साहब।
2: राम राम साहब,
1: आपको शुभ नाम?
2: द्वारिका लाल जी साहब।
1: द्वारिका लाल जी, कहाँ से बोल रहे हो आप?
2: मैं से बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ जी,

0: आपको प्रश्न दोबारा दोहराओ आप।
1: जैसे आपने गाय की खाओ उसे
0: काय खाओ चे आवाज आपकी सही सुना आ पा रही
1: एक मिनट क्यों आप सही
0: हेलो
2: आवाज साफ ना रही द्वार की लाल जी आवाज साफ ना रही आपकी
0: द्वार के लाल जी भी समझ गया कि भाई आवाज बराबर सुन नहीं जा पा रही तो वह दोबारा प्रयास करेगा। डॉक्टर साहब बात हो रही थी कि भाई पशुओं को लेकर जो सरकार की योजना चल रही है
2: योजनाएं चल रही बहुत सारी योजनाएं चल रही है उनसे किसानों की आय दुगनी हो सकती है पशुपालन व्यवसाय में। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड अभी हर पशुपालक को जो जानवर रखता उसको बैंक से केसीसी लोन जो केसीसी लोन अपने को जमीन में मिलता वही पशुओं पे
0: केसीसी पर मिलता। बिल्कुल एक किसान साथी चे हेलो
3: हेलो
0: हाँ राम राम साहब
3: राम राम साहब
0: आपको शुभ नाम
3: मो राजू बोल रहे हो गांव बिलवाड़ा झालावाड़ से।
2: बोलो साहब राजू जी
0: स्वागत है आपको कहीं प्रश्न पूछ पूछा
3: सवाल ये है जो अभी जानवर के टीका लगा हुए नहीं तो जो डॉक्टर आवे वो पैसा मांगे
2: नहीं साहब आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय कैसे पड़े जे
3: हमारे तो ये पड़े झालावाड़
2: झालावाड़ी पड़े ना
3: कनवाड़ा
2: तो आप झालावाड़ में जाओ ये सरकार की योजना है निशुल्क टीका लगाएंगे। अभी आपके रोगड़ा का टीका लगाया जाए कहीं का लगाया जा
3: अभी तो नहीं लगाया
2: हाँ अब लगा होगा अब 20 तारीख से अभियान चालू होगी गड़गोटू को गड़गोटू का गड़ाटा का टीका जरूर लगाओ था और इमर सरकार का टीका 1 रुपये नदी में था फ्री लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल
3: यहाँ से जो डॉक्टर आवे वो 50-50 रुपया ले
2: नहीं तो आप उसकी शिकायत करो आप झालावाड़ में जाओ वहाँ डॉक्टर टी ए बंसोड है ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रहलाद जी है झालावाड़ में मिनी सचिवालय में बैठे थे आप उनको लिख के दे दो कर साहब मांगे गांव में टीका लगा पाओ से फलाउन कंपाउंडर ये वहां से पीसा मांगे जी
3: अच्छा
2: उसको तुरंत हटा दिया जाएगा वहां से।
3: ठीक ठीक
2: आप शिकायत करो सरकार की योजना है निशुल्क फायदा लो आप
0: शिकायत भी करो टीको भी लगवाओ
2: टीका जरूर लगवाओ जाना
0: है ना
3: वो तो कहेगा मांगे तेल का पीसा तो चाहिए
2: नहीं वो सरकार ने नौकरी दे रखी सरकार की ड्यूटी से 12 किलोमीटर एरिया में तो वो जाओगे अपनी गाड़ी से साधन से फ्री टीका लगा रहा हूँ।
0: बिल्कुल
3: ठीक है
0: राम राम साहब
2: राम राम साहब
0: हाँ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बात करा कर जैसे यहाँ पानी ज्यादा पड़े छे तो उस समय पर पशुओं के ताई बरसात से बचावा के लेकर
2: जब
0: कई बातों को ध्यान रखना
2: बारिश ज्यादा हो जाती साहब मानसून जैसे पिछले साल बारिश भयंकर हुई थी तो पड़ लेते हो जाता तो उसमें जानवर ही नष्ट हो मरते है और दुधारू जानवरों का बहुत ज्यादा नुकसान हानि होती है।
0: हाँ घनी जगह सी रहे जहाँ नीची जगह रहे पानी बढ़ जाओ
2: पानी बढ़ जाते हैं जानवर जैसे खूंटे से बंधे रहते हैं तो जानवर की भी हानि हो जाती है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा अपने जानवरों के जो बाड़ा बनाते हैं अपन जो खड़क बनाते हैं वो ऊंची जगह पे जो बरसात का पानी जैसे पानी भी गिरे ना तो पानी बह के नीचे निकल जाए जानवरों के यहाँ कीचड़ नहीं होना चाहिए। अगर जानवरों के कीचड़ हो जाता जानवरों के क्या आप कहते हो साहब वहाँ की जानवर डेरे सड़की रोगड़ होगी जबकि रोगड़ा नहीं होता वो कीचड़ की वजह से जानवरों के पैरों में छाले हो जाते हैं और छाले होके कीड़े भी पड़ जाते हैं वो फुट रूट होती है।
0: बिल्कुल एक किसान साथी जी राम राम साहब
1: राम राम साहब
0: आपका नाम
1: द्वारकीलाल जी आपने
2: चारो कम खाओ जे
1: हाँ एक कोई उपाय बताओ ना
2: बिल्कुल क्या बन जाए दूध दे रही जे कितना महीना की कितना महीना की आपने
1: दो ढाई महीना हो गया
2: दूध भी दे रही जगह बार
1: डागी
2: अच्छा डागी तो ढाई महीना अच्छा डागी को मतलब आप उस जानवर को सही ढंग से पशु आहार नहीं खिला रहे आप उस जानवर को पहले तो पेट के कीड़ों की दवाई दो नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाओ वहाँ से पेट के कीड़ा की दवाई लाओ निःशुल्क और वहाँ पर आपको एक पाउडर देंगे मिनरल मिक्सर।
1: हेलो
2: हाँ हेलो पेट का कीड़ा आवाज आ रही है
1: हाँ
2: पेट के कीड़ा की दवाई दो आप जानवर को
1: अच्छा अच्छा
2: सुबह के टाइम पेट के कीड़ा की दवाई दो उसके बाद अच्छा, उसको अच्छा। पशु आहार मिनरल मिक्सर आता है पशु चिकित्सालय में निशुल्क मिलता आधा आधा अच्छा। किलो की थैली आती है आप एक थैली लेके आओ 50 ग्राम आपको पाउडर देना बांटे में खड़ में या चूरी में जो भी दाना देते हो आप
1: अच्छा
2: दड़िया में दे दो बिल्कुल उसमें आपको एक मुट्ठी वो पशु आहार दो मिनरल मिक्सर
0: बिल्कुल।

0: आपके जानवर भूख खुलेगी, चारा पानी खाने लग जाएगा और तंदुरुस्त रहेगा।
1: हाँ हाँ बताओ।
2: क्या आपने गाय का कुत्ता ने हवा
0: कुत्ता ने काट गली?
2: तो
0: अगर कुत्ता ने काट गया तो मैं कह रहा हूँ पशु चिकित्सालय में हमारे रेबीज के इंजेक्शन मिलते हैं। 3 इंजेक्शन अच्छा। तो आपको लगवाने ही हैं। 0, 3 और 7 0, 3 और 7
2: अच्छा
0: 3 इंजेक्शन
2: तो और जिसे इनको करा
0: नहीं करो ना दूध, अगर उसका दूध काम लो आप 3 टीका लगवा लेते। 3 टीका लगवा लेता ना
2: हवा नारी साहब तक
0: 3 टीका लगवा लेगा आपने?
1: हाँ
0: लगवा ले तो कोई दिक्कत कोई नहीं, निश्चिंत रहो आप। अब आपको
2: उस गाँव को अच्छा
0: गाँव हो रहा गाँव के लिए तो आपको जाके एंटीसेप्टिक क्रीम लाओ, गामा व्यंजन आती है बहुत सारी ट्यूबे आती है, पहले लाल दवा से गाँव को धो और गाँव धो के फिर उसका मलम लगाओ आप। पशु चिकित्सालय में ट्यूब मिलती है।

0: मिलते तीन इंजेक्शन तो आपको लगवाने ही हैं, जीरो तो तीन और सात, जीरो तीन और सात।
1: अच्छा
0: तीन
1: तो और जिसे इनको
0: नहीं करो ना दूध, अगर उसका दूध काम लो आप तीन टीका लगवा लेते, तीन टीका लगवा लेता ना
1: नारी साहब,
0: तीन टीका लगवा लेगा आपने।
2: हाँ
1: लगा ले साहब,
0: लगवा ले तो कोई दिक्कत कोई नहीं, निश्चिंत रहो आप। अब आपको
1: पर गाँव कुछ कर ना, गाँव बुरा कर, गाँव से बुरा।
0: अच्छा गाँव हो रहा, गाँव के लिए तो आपको जाके एंटीसेप्टिक क्रीम लाओ, गामा व्यंजन आती है, बहुत सारी ट्यूब आती है, पहले लाल दवा से गाँव को धो और गाँव धो के फिर उसका मलहम लगाओ आप। पशु चिकित्सालय में ट्यूब मिलती है, हीमेक्स मिलती है, लोरेक्जन मिलती है, गामा व्यंजन मिलती है।
1: अगर मैं
0: खाए
2: हल्दी,
0: हल्दी बिल्कुल, हल्दी तेल लगाओ, खोपरे का तेल लगा सकते हो आप, कपूर खोपरे का तेल लगा सकते हो आप, बिल्कुल लगा सकते हो आप,
2: बिल्कुल
0: उससे गाँव। हाँ बिल्कुल, उससे मक्खियाँ मच्छर भी नहीं बैठेगा, कीड़े भी नहीं पड़ेगा गाँव में,
2: बिल्कुल
1: नहीं नहीं लगा जाएगा
0: साहब। हल्दी
1: हाँ
0: जो
1: गाँव में हल्दी,
0: गाँव में हल्दी तेल मिला के लगा सकते हो आप।
1: अच्छा अच्छा,
0: तेल मिला के आप हल्दी लगा सकते हो गाँव में, बिल्कुल उससे कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, तेल मिला के, सरसों का तेल मिला के हल्दी लगाओ आप, तेल मिला के
1: नहीं गरम करना पड़ेगा।
0: हाँ तेल को गरम करो, फिर ठंडा करके उसमें हल्दी मिला के फिर उसको आप या तो रुई में ले लो तेल को, और कपड़े में बांध के आप उसके गाँव के बांध सकते हो या गाँव पे लगा सकते हो रुई से, बिल्कुल बिल्कुल।
2: राम राम साहब,
1: राम राम साहब।
2: हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हाल भी कई सारा प्रश्न मारा मन मचे, पर आपन सब समय सु बंध्या हुआ है और घड़ी की सुइया करी जग भाई चाल भागो भगत हो रहे। तो अब चालता हूँ आप संदेश का तौर पर किसान बन भाई का काई खबर चाहोगा।
0: किसान भाइयों देखो बहुत अच्छी बात, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अभी अपने पूरे हाड़ौती संभाग में राजस्थान सरकार ने एक योजना चला रखी SS सोर्टेड सेक्स सीमन, ये सीमन बहुत अच्छा आया है, इसमें आपके दुधारू जानवर को आप ज्ञापन कराते हो तो 90% तक उसके बछड़ी ही होगी। अगर गाय में करवाते हो आप तो बछड़ी, भैंस में करवाते हो तो वो भी नस्ल की, जैसे गिर है, साहिवाल है, HF है, जर्सी है, ऐसे भैंस में मुर्रा है, तो आप अपने जानवर को सेक्स सोर्टेड सीमन से ही ज्ञापन करवाए, और नजदीकी पशु चिकित्सालय में ये आपको मिनिमम रेट में, जबकि सरकार इसको 1500 रुपये में खरीद रही है, और आप पशुपालक भाइयों को ये सीमन केवल मात्र 70 से 100 रुपये में आपके घर पे जाके हमारा कृत्रिम गर्भाधान का जो काम करता है EI वर्कर वो आपके घर पे जाके बीज डाल देगा।
2: बिल्कुल बहुत बढ़िया सर,
0: इससे आपके जानवर को जो बछड़ी होगी वो प्योर नस्ल की बछड़ी ही होगी। इससे आपका दो काम होगा, एक तो आपके गांव में जो आवारा नंदी गोवंश है, नर पशु, इनसे छुटकारा मिल जाएगा, और जो उसके जो बछड़ी होगी वो अच्छी नस्ल की, प्योर नस्ल की, वो दुधारू होगी, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी और आपका इनकम सोर्स भी
2: बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, डॉक्टर कमलचंद मीणा पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग 12 आप चौपाल कार्यक्रम में पधारे और किसान बन भाइयों के लिए अपना महत्वपूर्ण जानकारी दी चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब,
0: राम राम साहब, राम राम साहब।
2: किसान बन भाइयों चालता हूँ यहाँ अपन कृषि उपज मंडी समिति कोटा का मंडी भाव भी जान लिया, गेहूं को भाव रहे 2341 रुपया से 2611 रुपया, सरसों बकीचे 6600 रुपया से लेर 7800 रुपया, सोयाबीन बकीचे 6341 रुपया न्यूनतम भाव, अधिकतम 6856 रुपया, धान बकीचे 3901 रुपया से लेर 4855 रुपया, धनियों बकीचे 12300 रुपया से लेर 14045 रुपया तय, और उड़द बकीचे 5086 रुपया से लेर 6400 रुपया तय, मक्का बकीचे 1925 रुपये से लेर 2080 रुपया, और लसुन की बात करा तो 8400 रुपये से लेर 18125 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब से भाव रहे हो। तो किसान बन पाया भाव के अनुसार ही अपना अपनी फसलों का ताई मंडी में लेट जावा और बेचा। किसान बन भाइयों के साथ ही चौपाल कार्यक्रम को भगत अब पूरा हो, आपका साथी शशि भाई का ताई द्योन मती चला, फिर मलंगा नई बात नई जानकारियां के साथ। राम राम।

श्रोताओं, अभी हमारे किसान बहन भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है और अब वक्त हो चला है लोक संगीत का। तो आइए सबसे पहला लोक संगीत सुनते हैं सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, लोक संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। सुरभि मेहता की आवाज आप तक पहुंच रही है। आइए अगले लोकगीत की तरफ चलते हैं। अगला लोकगीत अनुराधा पोरवाल और साथियों की आवाज में, छोटी सी उम्र में। आइए सुनते हैं।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला लोकगीत। सीमा मिश्रा, सतीश डैरा, ममता सिंह की आवाज में बाजूदर बंगड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही न्यूज ऑन एयर ऐप पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब वक्त हो चला है 8 बज चुके हैं घड़ी में। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। आइए चित्रपट संगीत का पहला नगमा सुनते हैं। दीवार फिल्म का किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज, शब्द

0: साहिल लुधियानवी की और और म्यूजिक आरडी बर्मन का।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

श्रोताओं, चित्रपट संगीत में आइए चलते हैं अगले नगमे की तरफ। आर पार फिल्म का नगमा हम सुनने वाले हैं गीता दत्त की आवाज में, जिसमें शब्द हैं मसरूर सुल्तानपुरी के और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना श्री 420 फिल्म का यह नगमा, शैलेंद्र के शब्द और म्यूजिक शंकर महादेवन का। चित्रपट संगीत में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और अब सुनते हैं 16वां साल फिल्म का यह नगमा हेमंत कुमार की आवाज में, और शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आर डी बर्मन का।

आइए श्रोताओं, अब अगला नगमा सुनते हैं मजरूहत सुल्तानपुरी की कलम से लिखा हुआ एक खूबसूरत सा नगमा आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज रे। तीसरी मंजिल फिल्म का नाम और इसमें संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

सीता और गीता फिल्म का नगमा अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, जिसमें शब्द आनंद बख्शी के थे और संगीत आडी बर्मन का। आइए चित्रपट संगीत में अगले नगमे की तरफ हम चलते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है और आप सभी लोगों के दिल के करीब भी होगा। थोड़ा मस्ती वाला, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला, आइए सुनते हैं। बॉबी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज में, शब्द आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आप आनंद ले रहे हैं, सुरभि मेहता की आवाज आप तक पहुंच रही है। चलिए अब एक प्यारा सा नगमा सुनते हैं, मस्ती भरा नगमा सुनते हैं, आपकी कसम फिल्म का, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज, शब्द आनंद बख्शी के और संगीत आरटी बर्मन का।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आनंद ले रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ। चित्रपट संगीत का ये आखिरी नगमा आपकी तरफ, कभी कभी, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में, साहिर के शब्द और संगीत खयाम का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका पसंदीदा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। थोड़ी देर में अब आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को

0: और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48,95,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63,98,00,000 रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता

0: ने ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने

0: का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब वक्त है फिल्म संगीत का। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं और फिल्म संगीत में आज के कलाकार होंगे हेमंत कुमार। श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है और उन्हीं में से एक आवाज है हेमंत कुमार की। कुछ गीत जिसमें सिर्फ धुन ही नहीं होती बल्कि यादों का हिस्सा और वो किस्सा होता है जो कि एक बहुत बड़े दिल को सुकून दे जाता है। उनकी गहरी मखमली और सुकून भरी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ और संगीत जगत को अनगिनत, जी हाँ अनगिनत अमर गीत दिए, जिनके गीत आज भी शाम की चाय और बरसात की फुहार और पुरानी यादों का सबसे खूबसूरत साथी बन जाते हैं। और आज का ये जो फिल्म संगीत का कार्यक्रम है, इसमें हमारे कलाकार हेमंत कुमार वही वो इंसान है। और इनके सुरों की बात की जाए तो जब आप सुनेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि शहद घुल गया है। कई सारे नगमे आपने इनके सुने होंगे, कई सारे नगमे आज शायद पहली बार सुनेंगे। तो चलिए थोड़ी सी

शांति की तरफ चलते हैं और मन में सुकून देने वाले इनके वो नगमे सुनते हैं। सबसे पहला नगमा आइए साथ में मिलकर सुनते हैं, तुम पुकार लो, एक खूबसूरत सा नगमा आपकी ओर।

0: रानी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का आप आनंद ले रहे हैं और कभी कभी दिल की कुछ बातें शब्दों में कही नहीं जा सकती, लेकिन उसे संगीत जब बजता है, उसकी जो धुन होती है, उसके जब शब्द होते हैं, उसमें जो खूबसूरत जज्बात समेटे हुए होते हैं, वही एक खूबसूरत सा नगमा बन जाता है। और अगला नगमा जो आने वाला है वो हेमंत कुमार ने गाया है, साथ में लता मंगेशकर की आवाज़ भी सुनाई देंगी। तो रिश्तों की खूबसूरत बात शायद यही होती है कि कई बार बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ लिया जाता है। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा, बात एक रात की फिल्म से, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत SG बर्मन का।
2: मगर लगता

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप और आज की हमारे इस फिल्म संगीत सेगमेंट में हेमंत कुमार की बात की जा रही है और उनके नगमे सुने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हेमंत कुमार हिंदी और बांग्ला संगीत जगत के एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी गायकी और संगीत दोनों से एक अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज की गहराई और सादगी उन्हें अपने दौर के अन्य गायकों से अलग ही बनाती थी। उन्होंने प्रेम गीतों से लेकर रहस्य वाले गीत, भावनाओं वाले गीत, कई सारे अलग अलग अंदाज में बखूबी

अच्छे गीत गाए और एक गायक, एक संगीतकार, एक निर्माता के रूप में उनका योगदान हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रहा। जैसे कि आपको बताया कि भारतीय सिनेमा की सबसे सुकून भरी आवाजों का जब भी जिक्र होगा तब हेमंत कुमार का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ जिसमें सादगी और गहराई दोनों है और हाँ सुकून तो जरूर है। तो पुरानी यादों में आइए चलते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: हेमंत कुमार जी की गीतों की एक खास बात थी कि वे उनमें शब्दों से ज्यादा एहसासों पे बात करते थे। उनका अगला गीत भी प्रेम और उम्मीद की ऐसी ही खूबसूरत अभिव्यक्ति है। जब दिल किसी का इंतजार करता है तो चांद, सितारे और पूरी दुनिया भी उसी शख्स से जुड़ी हुई लगने लगती है। और इसी खूबसूरत से पिरोया हुआ अगला गीत आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, जब संगीत सिर्फ मनोरंजन या एंटरटेनमेंट ना होकर एक प्रार्थना बन जाए तो ऐसे गीत पीढ़ियों तक याद रखे जाते हैं। हेमंत कुमार जी का अगला गीत हमें विश्वास, प्रेम और होप यानी कि आशा का संदेश देता है। आइए सुनते हैं। तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म से।

परियों को कभी किसी ने देखा तो नहीं, उनकी खूबसूरती शायद ऐसी होगी।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, बहुत कुछ करने के पहले बहुत से संघर्ष भी देखने होते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमंत कुमार ने अपने संगीत सफर की शुरुआत काफी संघर्षों के साथ की थी। शुरुआती दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपने आगे कदम बढ़ा लिया तो पीछे मुड़ के मत देखिए, आप हार मत मानिए। तो वही जज्बा उनमें था। धीरे धीरे उनकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई सारे नगमे उनके बहुत हिट गए, कई सारों के लिए अवार्ड भी मिला। और मजे की बात तो ये है कि इतने बड़े कलाकार बनने के बाद भी जब भी आप बेहद शांत और सरल स्वभाव की बात होगी तो वहां पे हेमंत कुमार जी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत सौम्य था। और ये जो उनका व्यक्तित्व था, ये उन्हें दूसरे कलाकारों से काफी अलग बनाता था। तो उनकी आवाज उनकी पहचान है और रहेगी। तो चलिए अब अगले नगमे की तरफ बढ़ते हैं। लागा चुनरी में दाग, एक खूबसूरत सा नगमा आपकी तरफ, आइए सुनते हैं।

आई श्रोताओं, अब हेमंत कुमार जी की आवाज में एक कालजयी नगमा सुनते हैं जिसका नाम है जाने वो कैसे लोग थे। प्यासा फिल्म का हेमंत कुमार की आवाज, शब्द साहिर के और संगीत एस जी बर्मन का।

प्यार की बात हो ही रही है तो प्यार की कहानी चलिए अब बुनते हैं। प्यार की कहानी में कभी खुशी होती है, कभी इंतजार, तो कभी एक मीठी सी बेचैनी। इन्हीं फीलिंग्स के साथ भावनाओं को सुरों में पिरोया हुआ अगला गीत आइए सुनते हैं, जाग दर्द ए इश्क जाग। एक खूबसूरत सा नगमा आप सभी के सामने लता मंगेशकर, हेमंत कुमार की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला नगमा कोहरा फिल्म से। फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप और हेमंत कुमार की बातें हम कर रहे हैं, उनके गाने और नगमे हम सुन रहे हैं। आइए अगला नगमा सुनते हैं, ये नयन डरे, शब्द कैफी आजमी का और संगीत हेमंत कुमार का। आइए साथ में मिलकर आनंद लेते हैं।
1: ये नयन

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जिसमें मस्ती है, बेफिक्री है और जवानी की खूबसूरत भावना है। और आज इस गीत की धुन सुनते ही आपके होठों पे मुस्कान जरूर आ जाएगी। आइए सुनते हैं 16 साल फिल्म का यह नगमा, हेमंत कुमार की आवाज में, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत SG बर्मन का।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला नगमा। जरा नजरों से कह दो जी, 20 साल बाद फिल्म का यह नगमा। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में।

श्रोताओं, आज हमने सुरों के उस जादूगर को याद किया जिनकी आवाज में सुकून था, गहराई थी और दिल को छू लेने वाली सादगी थी। हेमंत कुमार जी ने अपने गीतों और संगीत से भारतीय सिनेमा को एक ऐसी धरोहर दी है जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में अब आप विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे, दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत। हाँ, कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूँ। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार। चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पे, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूँ सब, सब कुछ, सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूँ। अब मैं अपने वश में हूँ। हाँ, अब मैं अपने वश में हूँ, किसी और के नहीं।

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी व अंग्रेजी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न

0: पहलू शामिल हैं जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
2: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।